0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
3: Listen Learn, discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

www.music.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक. हम बढ़ते हैं दोबारा अपने प्रोग्राम की तरफ. आप जानते हैं कि आज हमारे साथ फिजिक्स डिपार्टमेंट मौजूद है. 7 डिपार्टमेंट्स हैं FOST के मातहत और 7वां डिपार्टमेंट फिजिक्स है. आज आखिरी प्रोग्राम है. डॉक्टर ताहिरा साहिबा, आपसे शुरू करूंगा. आप मुझे ये बताइएगा कि प्योर साइंसेज जो हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, ये क्यों अपनी कदर खो रहे हैं?
4: सर, ये मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि वन कैन नेवर डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक साइंसेस. उसके बगैर मुमकिन नहीं है. लेकिन अगर हम देखें, एज वी ऑल नो कि वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी. अब बेसिक साइंसेस जो हैं वो हो चुकी हुई हैं, उनके बारे में रूल्स, प्रिंसिपल्स वो डेवलप हो चुके हुए हैं, लॉज डेवलप हो चुके हुए हैं. उनको अप्लाई करके अप्लाइड साइंसेस जो हैं वो अब ज़्यादा ग्रो कर रही हैं.
3: डॉक्टर अलवी साहब, यही सवाल लेकर आपकी तरफ आऊँगा कि क्या वजह कि बेसिक साइंसेस जो कि एक शजर की मानिंद होती हैं, उससे हट के लोग फल खाने पे लगे हुए टेक्नोलॉजी की तरफ, आखिर क्या वजह है?
5: सर, वजह ये है कि देखें, बेसिक साइंस को किसी तौर पे हम इग्नोर नहीं कर सकते. बेसिक्स, जैसे कहते हैं कि रूट्स हैं तो ट्री ग्रो करता है. सो रूट्स आर द फंडामेंटल्स. डेट्स वाई कि बेसिक साइंसेज आर द फंडामेंटल्स. इनके बेस पर ही अब ये न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज ग्रो कर रही हैं. तो हमें ज़रूरी है कि हम पहले इनको, हाँ, इसमें कुछ न्यू एडवांसमेंट लेकर आएँ. इन बेसिक साइंसेज में हम अपने रोड मैप को रीशेड्यूल करें, रिव्यू करें और उसमें कुछ चेंजिंग लाएँ, अप टू डेट करें, स्टेट ऑफ द आर्ट करें, तो इंशाल्लाह ये हमारा बेसिक साइंसेज पीछे नहीं रहेंगे फिर इसमें.
3: जी बिल्कुल ठीक, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया. डॉक्टर मुजस्सर अली शाह साहब, आपसे भी यही सवाल पूछूंगा, क्या वजह के बेसिक साइंसेस अपनी कदर क्यों खोती जा रही हैं?
6: जी सर, जिस तरीके से डॉक्टर ताहिरा और डॉक्टर अलवी ने बात की, बिल्कुल सही है कि बेसिक साइंसेस जो हैं, इन तमाम चीज़ों का जो है स्टार्टअप है. यहीं से हम इस चीज़ को डेवलप करते हैं. जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे लोगों का फोकस आजकल ज़्यादा है. लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा अगर इसको बताना चाहूँ, कि जैसे आज से कुछ साल पहले एक इंजीनियर वकार अजीम साहब आए थे टीवी पर, उन्होंने पानी से गाड़ी चलाने की एक
3: नाकाम
6: कोशिश की थी और उसमें बहुत ज़्यादा लोग कन्विंस भी हो गए थे कि मतलब ऐसा पॉसिबल है. लेकिन एज अ बेसिक साइंस एक्सपर्ट, हमारे जो सीनियर्स थे, उन्होंने फौरी तौर पर बताया कि इट्स नॉट पॉसिबल बाय जस्ट यूजिंग अ सिंपल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी. तो इसका मतलब है, जब तक आपके पास बेसिक साइंस का नॉलेज नहीं होगा, आप जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में भी जो है वो एक्सेल नहीं कर सकते. सो वी नीड कि ये इनको हमें छोड़ना नहीं है. लेकिन जैसे आतिफ साहब ने कहा कि इन्हीं में हम ऐसी एडवांसमेंट लेके आएँ जो कि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, ज़्यादा अप्लाइड नेचर की हों, और उसके ज़रिए जो है वो हम बेसिक साइंसेज को दोबारा अपने मुकाम पर लेके आ सकते हैं.
3: बिल्कुल ठीक. डॉक्टर अलवी साहब, आप बताइएगा कि जैसे हमने कोशिश की फिज़िक्स को दोबारा से अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए और दिलवाने के लिए, तो हमने BS फिज़िक्स प्रोग्राम को हमने रिस्ट्रक्चर किया. थोड़ा सा बताइएगा मुख्तसरन, क्योंकि बाकी भी पैनलिस्ट से ये सवाल मैं करूँगा.
5: जी सर, बिल्कुल सर, हमने रीस्ट्रक्चर किया. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने पहले तो इसमें स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई. 4 स्पेशलाइजेशन हमने कहा कि BS फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करवाई थी, मेडिकल फिजिक्स में थी, AI फिजिक्स में थी, फिर नैनो टेक्नोलॉजी फिजिक्स में उसमें हमारे पास थी. देन जब रीस्ट्रक्चर फर्दर किया तो हमने एक और फिर बैचलर प्रोग्राम इसमें इंट्रोड्यूस करवाया फिजिक्स डिपार्टमेंट ने, अंडर द काइंड सुपरविजन ऑफ यू सर डॉक्टर करार, BS इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग. और स्टेट ऑफ द आर्ट है, एज यू नो, जैसे कि नाम जो है हमारे टेक्नोलॉजी की जो रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग, बिकॉज कंप्यूटिंग एंड AI इन्वॉल्व इन ऑल फील्ड्स. डेट्स वाई विदाउट देयर वी कांट ग्रो. सो ये हमने कुछ इसमें कुछ न्यू इंट्रोड्यूस.
3: वेरी ट्रू. डॉक्टर ताहिरा साहब, मजीद इस पर रोशनी डालेंगे, BS कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग और मजीद इस पर क्या क्या है?
4: ये एक इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, प्रोग्राम है, जो एक परफेक्ट ब्लेंड है प्रिंसिपल्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का. इट फोकसेस ऑन द डिजाइन, फैब्रिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नैनो स्केल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंटीग्रेटेड विद मॉडर्न कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी. तो अगर मैं बात करूं इसके कुछ की बेनिफिट्स की, तो इसमें इंडस्ट्री लेवल इंडस्ट्री रेलेवेंट नॉलेज स्टूडेंट्स को मिलता है लाइक ट्रेनिंग इन VLSI डिज़ाइन क्वांटम कंप्यूटिंग सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज विच परफेक्टली अलाइंस विद द करंट टुडेज डिमांड. और फिर उसके बाद यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे लाइक माइक्रो एंड नैनो फैब्रिकेशन ऑफ डिवाइसेस सर्किट डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग में. रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स विल गेट एन एक्सपोजर टू कटिंग एज रिसर्च इन नैनो डिवाइसेस स्पिनट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग सिस्टम्स.
3: बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सिर साहब, आप भी इस पर कुछ अपना इजाफा कीजिएगा कि इस नए प्रोग्राम के तारुफ करवाने से क्या हम जदीद तकाजों को पूरा कर पाएंगे.
6: जी सर, इसमें हमने बेसिक जो कोर्सेज हैं उनको भी साथ रखा है, जैसे हम इसमें वेव्स एंड ऑसिलेशंस भी पढ़ा रहे हैं, हम इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को भी लेके चलेंगे, फिर हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे इसको फोकस करेंगे. उसके बाद फिर हमने इसमें ऐसे प्रोग्राम्स एंटर किए हैं जो कि लादमत एडवांस लेवल के हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग है, जिसमें आप मैथमेटिकल मैथड्स हैं जिनके थ्रू आप जो है ये जो आपके डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनको आप मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हुए उनके ऊपर फिजिक्स भी इम्प्लीमेंट करें, मैथमेटिक्स भी इम्प्लीमेंट करें और फिर उसको कंप्यूटिंग के थ्रू भी जो है उसको करवा रहे. तो ये जैसे डॉक्टर थायरा ने कहा ये ब्लेंड है बेसिकली तीन फील्ड्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स एंड कंप्यूटिंग. तो इस वजह से यहाँ इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी कि इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और वहाँ पर उनके लिए जो है वो इंडस्ट्री लेवल पे अपनी जॉब्स को
3: सिक्योर
6: करना बहुत आसान हो जाएगा.
3: जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े तफसील से बताया. सो लेट्स होप एंड प्रे कि ये नया इनिशिएटिव जो है वो अल्लाह ताला इसको बार आवर करे और समर आवर करे. इसी के साथ हम चलते हैं एक और वक्फे की तरफ, कहीं मजा आइएगा, सुनते रहिए UCP की दुनिया.

0: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया
1: जी लिए लिसनर्स वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर अलवी, मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों की ज़हनी तालीमी इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए फिजिक्स डिपार्टमेंट में आप क्या ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा हो पाए?
2: जी डॉक्टर साहब, इसमें क्योंकि हमारे पास करिकुलम के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का होना भी ज़रूरी है, तो डेट्स वाई स्टूडेंट्स को स्टडी के साथ साथ इंगेज करने के लिए हम जैसे फेस्ट है हमारा जो पिछले 2 साल से चल रहा है और हो रहा है, इनकाद हो रहा है उसका, तो उसमें हमने बाकायदा इंटरटेनमेंट के लिए ह्यूमन लूडो टाइप ऐसी एक्टिविटीज़ भी रखी हुई हैं। इसके अलावा फिर उनमें कम्पटिशन डेवलप करने के लिए जो है पोस्टर कम्पटिशन्स का है, देन ब्रेन फेस्ट का है, गेम्स का है, इस तरह प्रोजेक्ट्स का है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने उसका कंपटीशन है, देन इस किस्म की एक्टिविटीज़ में उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए कि एक हमने फिजिक्स डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, डॉक्टर करार साहब ने उसको बाकायदा आगे प्रोसीड किया, जिसमें था कि जी नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक विजिट करवाया गया यहाँ पर उनके जो मेम्बर पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी का यहाँ पे एक सेमिनार करवाया गया, और उस सेमिनार में फिर बाकायदा बच्चों के लिए जो एक सीखने का बहुत सा लम्हा था, बहुत से अच्छा इंटरटेनमेंट मौजूद थी। इस किस्म की एक्टिविटीज़ का हम कोशिश करते हैं कि निकात करेंगे।
1: जी डॉक्टर तारा साहब, आप इसमें मज़ीद इजाफा करेंगी?
3: जी, चूँकि मेरा फील्ड नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी है, तो और ये ऐसा फील्ड है कि जिसमें रिसर्च और हैंड ऑन प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है, तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंटल लेवल पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस से डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशंस की हैं, जैसे सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ इन फिज़िक्स गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, फिर इसमें इन मोल में हम स्टूडेंट्स को नैनो मेडिसिन पे और मेडिकल फिज़िक्स पे रिसर्च करा रहे हैं, फिर हमने नेशनल सेंटर फॉर फिज़िक्स इस्लामाबाद जो है वहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के लिए विजिट्स अरेंज किए हैं, और आगे हमारे प्लान हैं कि हम रिसर्च कोलैबोरेशंस भी स्टूडेंट्स की को वहाँ पर भेजने और रिसर्च करने के मौके फराहम करेंगे। उसके अलावा फिर एनवायरमेंटल फिजिक्स में रिसर्च के हवाले से अगर देखा जाए तो उसके साथ हमने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनके साथ हमने कोलैबोरेशन की और हमारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पर जाके काम किया बिल्कुल अप टू डेट टॉपिक्स के ऊपर और अच्छी रिसर्च की जो कि पब्लिशेबल मटेरियल था। और इस तरह से हम ना सिर्फ इनके साथ अपने रिसर्च स्टूडेंट्स के साथ इन इंस्टीट्यूट्स और लैब्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बल्कि हम बाकी भी अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप्स वगैरह जो हैं वो भी अरेंज कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे और इन इंस्टीट्यूट्स में भी, जिनका मैंने जिक्र किया है कि वो 6 मंथ्स की शॉर्ट जो इंटर्नशिप्स हैं वो करें, उनको सर्टिफिकेशन मिले जो आगे करियर में भी उनको हेल्प करे, इसी तरह से उनको फिजिक्स के लॉज जो वो थ्योरी में पढ़ रहे हैं वही उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का भी मौका मिले।
1: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुजस्सिर साहब। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फेस्ट के दौरान और वैसे भी पीछे भी हमने एक दो जो पंजाब कॉलेज से भी हमने एक बुलाए थे उसके बारे में बताइए, वो एक्टिविटीज़ क्या थी?
4: जी, हमने PGC से जो है वो एक हसन फरीद साहब हैं जिनका बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है, वो एक बड़ी डायनेमिकल किस्म की वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो फिज़िक्स के बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत इजीली वे जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने उनको बुलाया, एक बहुत अच्छी गैदरिंग थी हमारे स्टूडेंट्स की,
1: स्टूडेंट ने उसको बहुत एंजॉय भी लोग आए थे।
4: जी बाकी डिपार्टमेंट से भी लोग आए और उसको उन्होंने बहुत एंजॉय किया और बहुत अप्रिशिएट किया। वो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी थी जिसमें हमने देखा कि स्टूडेंट्स जो है वो उन्होंने साइंस में इंटरेस्ट लिया, फिजिक्स के रूल्स एंड लॉज में इंटरेस्ट लिया और उसको बहुत अच्छे तरीके से परसीव भी किया कि ये चीज़ें कैसे, इवन ये कि बहुत सारे ऐसे फैकल्टी मेम्बर्स के साथ कुछ बच्चे भी आए हुए थे जिन्होंने में पार्टिसिपेट किया और वो उन्होंने इसको एंजॉय किया। फिर उसके साथ साथ हमने जो है वो एस्ट्रोनॉमी नाइट का भी एक अरेंज किया हुआ था जिसमें हमने एक टेलीस्कोप जो है वो अपने एक हमारे एक कोलीग हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने जो है वो यहाँ पर अरेंज की, वो हमने UCP की बिल्डिंग के टॉप के ऊपर हमने इंस्टॉल करके वहाँ से जो है वो सियारों का नज़ारा किया, वो भी हमारी एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गई। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो फिजिक्स डिपार्टमेंट अरेंज करता रहता है जिसमें हम स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रखते हैं ताकि खेल खेल में जो है वो स्टूडेंट जो है वो
1: अपनी मुझे बताइएगा जो आपका है खासा है माइंड गेम या ब्रेन गेम्स वो
4: जी ये मतलब मैंने यहाँ पर 2 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम पे यहाँ पर एक फेस्ट का जो चल रहा था उसमें हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की थी कुछ ब्रेन गेम्स जो ऐसी गेम्स जो कि मतलब बोर्ड गेम्स कहलाती हैं और अब पाकिस्तान में बहुत रेयरली जो है वो खेली जाती हैं तो उससे हमने स्टूडेंट्स को ज़रा स्टिमुलेट करने के लिए उनके माइंड को और
1: थॉट प्रोसेस को ट्रिगर करने
4: जी जी बिल्कुल तो उसमें हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमारे पास जो PGC के जो स्टूडेंट्स आए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के उन्होंने जो पहले साल था उसमें उनका इंटरेस्ट था फिर उसके बाद जब दूसरे साल वो आए दे ऑलरेडी न्यू अबाउट दिस गेम्स तो फिर उनका इंटरेस्ट उससे डबल हो चुका था कि जो पहली दफ़ा अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास किसी एक गेम के लिए 10 से 12 रजिस्ट्रेशन आई थी तो अगली दफ़ा वो 50-60 हो चुकी थी तो हमें फिर उसमें जो है वो फिर हमें एक कट लगाना पड़ा कि हमारे पास इतने अवेलेबल हैं तो हम इतने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं तो ये एक मतलब एक बेहतर उसकी तरफ गया तो इंशाल्लाह इन द फ्यूचर हम इस चीज़ को
1: कंटिन्यू
4: फन फैक्टर भी था और स्टूडेंट्स ने बहुत इसको एंजॉय किया
1: माशाल्लाह। डॉक्टर तारे साहबा आपसे पूछूंगा कि जो हमने जो नया प्रोग्राम BS इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस करवाया है उसके लिए आप ही किसी सजेशन पे आपने मुझे बताया था कि हम एक उस पर एक प्रीकर्सर के तौर पे एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे और एक छोटा सा कोर्स भी करेंगे इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो 2 से 3 हफ्तों पे मुश्तमिल होगा वो इनिशिएटिव क्या था हमारे सामने को बताइएगा।
3: यस सर ये हमने एक 3 वीक्स शॉर्ट कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका टाइटल है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स इन एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग सिस्टम्स तो ये बेसिकली 3 मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल है। इसमें फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो दैट कवर्स द इंट्रोडक्शन टू बेसिक नैनो टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग सिस्टम्स। सो इसके लिए जो स्टूडेंट्स को इसमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और फिर जो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए भी एक इंट्रोडक्टरी कोर्स ये फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो उनके लिए इंट्रोडक्टरी कोर्स के तौर पर बेनिफिशियल हो सकता है। सेकंड मॉड्यूल्स में ये सेकंड मॉड्यूल गिव्स द डीपर नॉलेज टू द नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर द टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स एंड वाइल द थर्ड मॉड्यूल विच विल बी कवर्ड इन द थर्ड वीक ऑफ द शॉर्ट कोर्स इसमें हम कवर करेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ दिस नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन एनर्जी इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स। सो ये एक तो 3 वीक्स का जो फुल करना चाहें शुरू से इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल से लेकर एप्लीकेशन तक और इसमें हमने ये भी फैसिलिटेट किया है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है किसी एक मॉड्यूल में या 2 में या 3 में तो वो इंडिविजुअली सिंगल मॉड्यूल में या 3ों में उसके लिए वो रजिस्टर्ड हो सकता है।
1: और इनके फ्यूचर इनके बेनिफिट्स क्या हैं थोड़ा सा बताइएगा मुख्तसर क्या फ़ायदा होगा बच्चों को।
3: बेसिकली ये इनको चूंकि ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है एक तो ये इनके लिए प्री रेक्विजिट हो जाएगा अगर BS प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग सिस्टम वो ऑप्ट करते हैं तो उसके अलावा इंडस्ट्रीज लेवल पे अगर देखा जाए जो कंसल्टेंट्स हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में और फिर सोलर सेल्स की इंडस्ट्रीज है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की इंडस्ट्रीज में तो उनको नॉलेज होगा उन डिवाइसेस के बारे में और वो उसको बेटर कर सकते हैं। फिर जो अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं तो आजकल यही जो रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उनकी नई इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं तो उसमें अगर कोई एंटर होना चाहता है तो उनको एक बेसिक नॉलेज ये कोर्स प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्च के लिए एज सच बेसिक साइंसिस के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें ये अप्लाइड कोर्सेज उस तरह से नहीं पढ़ाए जाते तो जब आप रिसर्च के लिए आते हैं तो ऑब्वियसली आपको अप्लाइड लेवल की रिसर्च करनी पड़ती है तो ये उनको रिसर्च की एक बुनियाद फराहम करता है।
1: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सिर साहब आपने फिजिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके और हेड ऑफिस के साथ मिलके एक और फिर आपने एक जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे भी 2 आपके हैं आप जो काम कर रहे हैं उनको मुख्तसर बताइएगा 2 मिनट में।
4: जी इनिशियली हमने एक आरवो कंपनी है जो कि पीजीसी के साथ काम करती है. दे आर डिज़ाइनिंग वीडियो लेक्चर्स फॉर मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स. उसमें जो टॉपिक्स हैं डिफरेंट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के या नाइन टेंथ के, उसको एक बड़ा इंटरेक्टिव काइंड ऑफ सिस्टम है जिसको यूज़ किया जाता है. वो ग्लास बोर्ड है जिसके पर आप जो है वो वीडियो लेक्चर्स देते हैं, और उसकी खसूसियत यह है कि उस के साथ साथ आप उसमें एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं. मींस आप एक तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं और आपके साथ जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि रोटेट कर रहा है, और आप उसी को रोटेट करते हुए उसमें दिखा रहे हैं उसकी डिफरेंट डायमेंशन, मतलब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को जो है वो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर. तो वो एक बड़ा खूबसूरत ब्लेंड है जिसमें आप खुद से भी राइट डाउन कर रहे हैं, इसमें वॉइस भी दे रहे हैं, उसके अलावा आप खुद भी पर्सनली अवेलेबल हैं, और उसके अलावा वह एनिमेशंस और वीडियोस भी उसके साथ चल रही हैं. तो उसके साथ हमने एक शॉर्ट सा एक वीडियो लेक्चर बनाया जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर था, जिसमें आप इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी ऑफ लाइट को. तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमने उसमें, और अब हम उसको आगे लेके चल रहे हैं कि हम उसको आगे जाएं और हम पूरा जो कोर्स है अप्लाइड फिजिक्स का, जो कि बेसिकली इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पूरे कोर्स को जो है वो डिज़ाइन करें और उसके लेक्चर्स जो हैं उस पे डेवलप करें.
1: और एक और इंटरनेशनल आपका जो इनिशिएटिव है,
4: जी जी,
1: इंडोनेशिया के साथ,
4: जी जी, इसी तरीके से हम इंडोनेशियन एक यूनिवर्सिटी है उसके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं कि कुछ उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो लेक्चर्स देंगे
1: online.
4: अभी ऑनलाइन, अभी ये इनिशियली है, तो हम 2-3 लेक्चर्स की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं इसकी सक्सेस के ऊपर कैसा होता है. इसी तरीके से यहाँ से मुझे नॉमिनेट किया गया है तो मैं वहाँ पर उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर दूंगा 2-3, तो फिर देखेंगे अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इन द लॉन्ग टर्म हम इसको आगे भी लेके चलेंगे, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, मजीद लेक्चर्स और मजीद कोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे.
1: दैट विल बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द टू यूनिवर्सिटीज एंड बिटवीन द टू स्टेट्स,
4: यस,
1: पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया,
4: जी जी बिल्कुल,
1: व्हिच इज आवर ब्रदरली इस्लामिक कंट्री,
4: जी जी बिल्कुल,
1: राइट. डॉक्टर अलवी साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ अरसे बाद मार्केट में जाएंगे फॉर सीकिंग डिफरेंट जॉब्स, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल सर, क्योंकि ये स्टूडेंट्स ही कह रहे हैं कि हमारी जो है एक किस्म का पब्लिसिटी भी है, तो मैं उन्हें बस यही एक इकबाल के एक शेर में कहूँगा, उन्हें मैसेज दूंगा कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा.
1: सुभान अल्लाह, बहुत आला, बहुत अच्छा. डॉक्टर तारा साहब, इसी तरह मुख्तसरन.
3: जी सर, मैं ये स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि अब आपके पास नॉलेज है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क, डोंट बी अफ्रेड ऑफ ड्रीमिंग बिग, एंड स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट फॉर यू.
1: डॉक्टर मुदस्सिर साहब.
4: जी सर, हमारे फिजिक्स के स्टूडेंट्स का जो है, मतलब फिजिक्स ऐसी फील्ड है जो कि हर जगह पर इम्प्लीमेंटेड है. हमने यहाँ तक देखा है कि हमारे जो बीएस के स्टूडेंट, जैसे मेरा नस्क का एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने बीएस किया फिजिक्स में और उसके बाद वो मैकाट्रॉनिक्स में जो है उन्होंने एमफिल किया, इसी तरीके से वो आगे और मेटलर्जी की तरफ चले गए. इस तरीके से बीएस फिजिक्स जो है वो हर फील्ड में इम्प्लीमेंटेड
1: बेसिक प्लेटफॉर्म,
4: जी बेसिक प्लेटफॉर्म है. तो हमारे स्टूडेंट्स को बल्कि घबराना नहीं चाहिए, दे हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. बाहर के आप फॉरेन स्कॉलरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप एमएस के डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो इसके थ्रू जो है सिर्फ फिजिक्स नहीं, क्योंकि आप फिजिक्स के अलावा फिजिक्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अप्लाइड नेचर है, उसकी वजह से आप एप्लीकेबिलिटी की वजह से आप हर जगह पर जो है जहां कहीं पर भी इसका ब्लेंड मौजूद है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी अपनी एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हैं.
1: बहुत शुक्रिया, चूंकि बीइंग एचओडी फिजिक्स मेरा भी बनता है कि मैं भी अपने पास आउट होने वाले टू बी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए एक पैगाम दूं. तो जैसे अलवी साहब ने मुझे एक मशल राह फराहम कर दी कि जी इकबाल का एक शेर है कि आसमानों पर नजर रख अंजुमो महताब देख, सुबह की तामीर करनी है तो पहले ख्वाब देख. सो अपने ख्वाबों को देखिए रात को, क्योंकि इकबाल के बकौल ख्वाबों की दुनिया भी एक बिल्कुल दुनिया होती है जो एग्जिस्ट करती है, अब दोबारा से वापस जीती जागती दुनिया में आ जाते हैं. ख्वाब देखिए, उन्हीं ख्वाबों की तामीर के लिए दिन रात مشقت کیجئے، محنت کیجئے، جانفشانی سے، ایمانداری سے، صدق دل سے، اور کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ اسی کے ساتھ میں اپنے تینوں مہمانوں کا، ڈاکٹر مظفر علی شاہ کا، ڈاکٹر طاہرہ شجاع کا اور ڈاکٹر عاطف رحمان علوی کا مشکور ہوں کہ آپ آئے اور ہمارے آج کے پروگرام میں آپ نے چار چاند لگائے۔ آخر میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں، پاکستان

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.musicfeed.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6, UCP ke duniya.
1: www.ucp.edu.pk FM 92.6 live station of the nation.

0: Number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya. UCP ki duniya.
1: देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे, देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे।

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

Number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: ये है पाकिस्तान की आवाज यूसीपी रेडियो FM 92.6।
1: लिसन लर्न डिस्कवर विद रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

www.lucifer.edu.pk FM 92.2 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke din mein.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: डीमोटिवेट है। जी जनम।
1: वालेकुम अस्सलाम। पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ पे इतनी इज्जत बख्शी। और दूसरा, आपका जो क्वेश्चन है कि भाई आज का नौजवान जो है वो इस तरह डीमोटिवेट क्यों है, तो इसकी एक बेसिक वजह ये भी है कि जैसे ही उसकी एक लाइफ में चेंजिंग पाथ आता है जिसमें उसने अपना कैरियर, अपना फ्यूचर प्लान करना होता है, तो वो रेदर देन उसका अपने डिसीजन के अलावा समटाइम्स उसकी फैमिली के डिसीजन होते हैं उसके ऊपर, जिसके ऊपर वो उस तरह वर्क नहीं कर पाता, वो हार्ड वर्किंग शो नहीं करवा पाता क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही डिवेलप नहीं होता कभी भी। वो डिग्री तो ले लेता है, इवन वो हायर CGPA भी लेगा, बट वो उस तरह उसको एज अ प्रैक्टिकल फील्ड में क्रिएटिव नहीं हो पाएगा जिस तरह अगर वो अपनी च्वाइस या अपने मेंटेलिटी, अपने माइंडसेट के हिसाब से जाता। अब आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट के इंटरेस्ट को, जिसको जिसका हॉबी या इंटरेस्ट जो है आर्ट से रिलेटेड है, उसको आप किसी इंजीनियरिंग की फील्ड में डाल दे, तो नो डाउट वो डिग्री तो लेके ग्रेजुएट हो जाएगा, बट वो उस तरह अपनी डिग्री को परस्यू नहीं कर पाएगा इंजीनियरिंग को।
0: बिल्कुल ऐसे ही है अनम, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सेटिस्फाइड हूँ। और होता भी ऐसे ही है कि डिग्री फैमिली की तरफ से इम्पार्ट की जाती है बच्चों पे, उनसे नहीं पूछा जाता कि उनकी हॉबीज क्या हैं, उनका पैशन क्या है या वो किस डिग्री में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उनको समझाया जाता है कि आजकल डॉक्टर्स अच्छा कमा रहे हैं तो तुम मेडिकल फील्ड में चले जाओ, आजकल लॉयर्स एक उनका अच्छा फेम है सोसाइटी में तो आप लॉ कर लो। सो उन पे एक इम्पार्ट की जाती है डिग्री, तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सेटिस्फाइड हूँ, ऐसा ही होता है हमारी सोसाइटी में। और अनम, आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में जो आजकल एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की तरफ लोग हैं और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, सो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में रियल इन्फ्लुएंसर्स कौन है आज के दौर में?
1: अभी जैसे आपने मेंशन किया कि डिग्री आप चूज करते हो पैसे की बेस पे, किस में आपको अर्निंग ज्यादा होगी, आपका लाइफ स्टाइल लग्जूरियस कैसे होगा, आपको क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, तो इसी तरह ही है कि इन्फ्लुएंसर भी लोगों ने अब उसी को ही समझ लिया रेदर देन नेशनल हीरोज के भी, जो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जो टिकटॉकर्स हैं बहुत फेमस है जिनके फॉलोइंग इन अ मिलियंस है, आर यू कैन से के मोर देन मिलियंस है, तो उनको वो इन्फ्लुएंसर समझने लग जाते हैं। आप आज के बच्चे को पूछ लें आपने फ्यूचर में क्या बनना है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे आर्मी में जाना है, मुझे यूट्यूबर बनना है या फिर मुझे टिकटॉक पे या मुझे ना इतने फॉलोअर्स चाहिए इंस्टा पे, फेसबुक पे।
0: बिल्कुल ऐसी है ना, बिल्कुल मैं आपकी बात से सेटिस्फाई करता हूँ। बात यह है कि आज के दौर में अगर हम देखें तो चाइल्ड यूट्यूबिंग भी बहुत ज्यादा है। एक बच्चा है और वो यूट्यूबिंग स्टार्ट करता है, यूट्यूबिंग की तरफ आता है, तो वो देखता है ये चीज के देखें उसने मेरी एज के लड़के ने अपने लाइफ स्टाइल को कितना चेंज कर दिया है, यूट्यूब से पैसे कमा के या सोशल मीडिया के किसी डोमेन से भी पैसे कमा के उसने अपनी जिंदगी को कितना बेहतर कर लिया है, कार ले ली है, अच्छा घर ले लिया एक अर्ली एजेस में। सो इस की वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो अपने वक्त की ज़रूरत है या जो ज़माने की ज़रूरत है, उस डिग्री से हट के, उन कामों से हट के या पढ़ाई से हट के सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन की तरफ बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या आपको भी ये लगता है कि अर्ली एज में यूट्यूब पे आना या अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आना, क्या ये हमारी यूथ को ख़राब कर रहा है?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ का कोई एक पॉजिटिव साइड भी होती है और एक नेगेटिव साइड भी होती है। डिजिटल लिटरेसी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम इसको ना नहीं कर सकते कि हमने जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनको भी कम्पीट करना है, अदरवाइज हम बहुत अंडर डेवलपमेंट में रह जाएंगे बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन अ अंडर डेवलपमेंट कंट्री। तो अगर हम इसी चीज़ को अगर निगलेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ है कि ये पेरेंट्स को कंसिडर करनी चाहिए कि अगर वो एक 6 साल 10 साल के बच्चे को यूट्यूबिंग सिखा रहे हैं, बिकॉज आप देखेंगे बहुत सारे अंडर एज है जिनका इवन अकाउंट लीगल भी नहीं कंसिडर हो सकता अगर वो खुद पे आए तो उनको यूट्यूबिंग की तरफ आप लेके आ रहे हो, तो उनका ब्रेन एक्सपोजर या सोसाइटी एक्सपोजर क्या होगा? उनको बेसिक नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, उनको बस ये पता है कि हमने ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, हमारे इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, किस तरह हमने अट्रैक्ट करना है लोगों को अपनी वीडियोज के ऊपर। तो उनका जो एक एज अ चाइल्ड जो उनके हमारी चाइल्ड मेमोरीज होती हैं, जो एक फैमिली टाइम होता है, ठीक है, आपका स्वीट मेमोरीज होती है ना, क्योंकि बचपन कभी वापस नहीं आता है,
0: ये
1: सब कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, मैं मानती भी हूँ इस बात को कि बचपन का जो टाइम होता है वो सबसे एक लाइफ का ना यू कैन से कि मेरा तो फेवरेट पार्ट है, ठीक है, तो वो सभी का होता है। तो आप उनको इस तरह डिजिटल में डाल देंगे, उनको ये कर देंगे कि आपने वीडियो शूट करनी है, वो जहाँ जाएंगे भी आपने यूट्यूबर, अगर आप किसी बच्चे यूट्यूबर को देखने वो जहाँ जाएंगे वो व्लॉगिंग कर रहे होंगे, ठीक है, वो अपना डे व्लॉग कर रहे होंगे, तो वो इंजॉय कब करते हैं, ठीक है, वो अपनी जिंदगी जी कब रहे हैं।
0: ऐसी है, बिल्कुल अनम, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अगर हम अपने बचपन पे ही थोड़ी सी रोशनी डालें जिस एज फैक्टर से आप या मैं हूँ, तो हमारा डिजिटल डिवाइसेस से इतना ही रब्ता होता था कि दिन में एक दफ़ा उठ के वो GTA का एक पुराना वर्जन होता था उसमें गाड़ी को भगा लेना और गेम्स खेल लेना। लेकिन आज के दौर में देखें तो अगर एक बच्चा है वो खाना नहीं खा रहा तो उसकी मदर उसको जब तक मोबाइल पे साथ कार्टून्स लगा के पास नहीं रखेंगी वो खाना नहीं खाएगा। सो मैं समझता हूँ किसी हद तक जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें बच्चों को आदत होगी इन डिजिटल डिवाइसेस की। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारा गुनाह ज़्यादा है इन डिजिटल डिवाइसेस के साथ बच्चों को कनेक्ट करने में, या बच्चे खुद आजकल देख देख के डिजिटल डिवाइसेस से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं?
1: इसमें गुनाह तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन गलती somehow हमारी है, क्योंकि अब जब एक घर में पेरेंट्स भी फ़ोन पे होंगे, आप देख लें हमारा इवन मोबाइल यूज टाइम ज़्यादा होगा बच्चों से, कि हम इंस्टा फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं और हमने उनको अकाउंट्स बना के अगर दिए हुए हैं कि भाई ये चीज़ होती है, अगर बच्चे अगर हम उनको ये नहीं दिखाते कि भाई आपकी अभी एज नहीं है, ठीक है, आफ्टर 18 यू विल हैव अपॉर्चुनिटी कि आप इसको अवेल करो, आप जो चाहे इसको इस पर यूज़ करो, आपने व्लॉगिंग करनी है जो चीज़ करनी है करो, बट एट अंडर एज नहीं, अभी आपकी एज नहीं हुई। अब ये तो आप वो बात कर रहे हैं ना कि भाई अगर एक चीज़ यूज़ करनी आती है, अगर किसी बच्चे को गाड़ी की सेंस आ गया तो आप उसको होते हैं ना 12 साल की उम्र में गाड़ी दे के बोल दें भाई चलो ठीक है ड्राइविंग शुरू कर लो तुम, ठीक है ड्राइविंग कर सकते हो।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, और हमने जो बेसिक तरबियत लेनी होती है वो अपने पेरेंट्स की हैबिट से ही लेनी होती है। और जैसे आपने बात की और आपने बड़ा स्ट्रांग पॉइंट रखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो जैसा दिखा रहे होते हैं बच्चे उसी को अडॉप्ट करते हैं। सो इससे आगे हम कुछ फिगर्स आपके सामने रखेंगे कि क्यों इतनी यूथ पिछले एक साल में पाकिस्तान को छोड़ के जा चुकी है। सो इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक, और आप सुन रहे थे FM 92.6 UCP की दुनिया से एक न्यू प्रोग्राम जिसका नाम है उम्मीदें नौ, और हमारे साथ मौजूद थी अनम इलियास। तो बात को कंटिन्यू करते हैं और अनम से पूछते हैं कि जो जैसे हम बात कर रहे थे रियल इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, सो अनम आपको लगता है कि जो एक मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं पिछले कुछ सालों में, और हम देखते हैं कि वो एक रिकॉर्डेड पॉपुलेशन है जो पाकिस्तान को छोड़ के जा चुकी है, सो आपको लगता है कि वो इतना फिगर बड़ा जो पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं वो क्या किस से इन्फ्लुएंस होके जा चुके हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स बदल चुके हैं, हमारी सोच बदल चुकी है। पहले हम किसी और को फॉलो करते थे, आज की यूथ जो है वो किसी और को फॉलो करती है। तो आपको क्या लगता है वो किन को देख के इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं?
2: मेरे ख्याल से जो ऑलरेडी एक तो बाहर गई हुई कम्युनिटी है, एक तो उनसे वो इन्फ्लुएंस हुए हैं, और दूसरा ये कि उनकी जो रिमेनिंग फैमिली होती है उनके लाइफ स्टाइल से, कि भाई अब जैसे हमारे इधर कॉन्सेप्ट होता है कि एक फैमिली का एक बंदा बाहर गया तो उनके हालात बदल जाते हैं। आजकल की सोसाइटी का क्या माइंडसेट है कि आपकी फैमिली में से एटलीस्ट कोई एक बंदा बाहर के मुल्क में होना चाहिए ताकि आपको डॉलर्स पाउंड्स में इनकम आती रहे। तो आप पाकिस्तान में ना एज अ लग्जूरियस लाइफ आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता पाकिस्तान।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल।
2: और इसमें आपने जो एक स्टेटमेंट मुझे दी थी कि इतनी पॉपुलेशन की जो नंबरिंग है वो इतनी है कि वो आजकल हमें पाकिस्तान में एज अ क्राइसिस फील होनी चाहिए, तो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो PID है ये एक इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इनके मुताबिक 37% जो पाकिस्तानी है दे अर्ज टू लीव पाकिस्तान ऑन द बेसिस के भाई उनका लाइफ स्टाइल जो है ना वो बेटर हो जाएगा, उनके पास वो उनकी ड्रीम कार्स होंगी, ड्रीम हाउसेस होंगे, इस बेसिस पे वो फॉरेन शिफ्ट होना चाहते हैं कि भाई। लेकिन उनको ये नहीं आइडिया होता कि फॉरेन जाके आप उधर कई बार, हमेशा आप पे अल्लाह मेहरबान नहीं होता, कई बार आप ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है आपको, आपकी लाइफ इतनी इजी होने के बजाय हार्ड हो जाती है।
1: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं जिनमें डिस्कस किया जाता है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, और बिजनेस हब समझा जाता है पाकिस्तान को। बाहर से लोग आके यहाँ बिजनेस करते हैं और इतनी अपॉर्चुनिटीज से भरे हुए बहुत से शहर हैं। फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, कोई भी आप इंडस्ट्री वहाँ स्टार्ट करते हैं तो वो अच्छी ग्रो कर सकती है। ऐसे मल्टीपल पाकिस्तान में ऐसे शहर हैं जहां पे देखें, अब एक यूके कोई जा रहा है नौजवान, पहले यूके जाएगा, उसको वहां सेटल होते होते 5 से 7 साल लग जाएंगे आराम से, ठीक है। वो 5 से 7 साल वो जो अपनी एक हैंडसम अमाउंट 50-60-70 लाख रुपया भर के वो जो बाहर जा रहा है, यूके जा रहा है, वही अगर वो यहाँ पे इन्वेस्ट करके बिजनेस करे तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकता है जो वो वहाँ करना चाह रहा है। सो आप ये समझती हैं क्या कि पाकिस्तान, ये जो नौजवान बाहर जा रहे हैं, बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या इनको नहीं चाहिए कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके अपने लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें?
2: कोर्स, लेकिन ये वहीं पे बात आ जाती है ना कि अगर आप लोगों का माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है, उनको लगता है कि भाई अगर वो बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो वो उनको डॉलर पाउंड्स में इनकम आएगी, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो इना रुपीस आएगी, तो उसका यार क्या फ़ायदा है ना, वो रातों रात अमीर होना चाहते हैं, एक बात है, ठीक है, कि हमारे पास रातों रात ये भी आ जाए। आजकल के जनरेशन में और इवन आजकल के जो पेरेंट्स हैं जो हमारे बड़े हैं उनमें भी सब्र नहीं है, ठीक है, उनको बस रातों रात हर चीज चाहिए, भाई ये चीज सोच ली है तो ये मेरे पास कल ही होनी चाहिए।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, और सब्र और यकीन बहुत बड़ी ताकत होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह अनफाल में कि अगर इंसान सब्र और शुक्र के साथ चले तो वो इंसान कम वक्त में वो उन चीज़ों को अचीव कर सकता है जो उसने कभी सोची ही नहीं होती। सो आप क्या समझती हैं कि यूथ को सब्र के साथ अपने प्रोग्रेस को कंटिन्यू करना चाहिए, और इन फेक इन्फ्लुएंसर्स से जो कि अपनी बाहर की ज़िंदगी की, देखें मैं ये समझता हूँ, मैंने आजकल देखा है बहुत से मेरे फ्रेंड सर्कल में भी शायद ऐसे लोग हों जो आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट होते हैं, वहाँ लेबर में काम कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान में लेबर में काम करना पसंद नहीं करते, वहाँ लेबर में काम कर रहे होते हैं लेकिन वो जो डिनर करें या वो अपनी अपने 2-3 मंथ की बिजी लाइफ में से जब वो 2 दिन के लिए स्पेंड करेंगे अपनी वेकेशंस को, तो उनकी वो स्ट्रीक्स और वो इंस्टा पे स्टोरीज, फेसबुक पे स्टोरीज और स्टेटस व्हाट्सएप पे, सो इससे बहुत से नौजवान جو پاکستان میں موجود ہیں, جو جن کے پاس اپرچونیٹیز بھی ہیں, جو کام کر رہے ہیں وہ انسیٹسفائڈ لائف گزار رہے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو باہر آؤٹ آف کنٹریز میں لوگ رہ رہے ہیں, جو ان کے دوست یا ان کے فرینڈ سرکل یا ان کی فیملی میں سے جو لوگ باہر جا چکے ہیں, سو وہ اچھا وہاں پرفارم کریں, وہاں اچھا ارن کریں, وہاں بہت اچھی لیونگ اسٹائل کو اڈاپٹ کر چکے ہیں. سو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک حقیقت ہے کہ وہاں پہ جو لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں کیا وہ ریئل لائف ہمیں نظر آتی ہے جو ہمیں واٹس ایپ اسٹیٹس اور اسٹوریز وغیرہ پہ نظر آتی ہے؟
2: میرے مائنڈ سیٹ سے وہ ریئل ان کی ہو بھی سکتی ہے, یہ تو بلّہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی ریئل ہے یا نہیں, بٹ ہماری سوسائٹی یہ ضرور دیکھتی ہے کہ ان کے پاس گاڑی ہے, وہ اس طرح کی لائف انجوائے کریں, بٹ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی ان کے پاس فیملی نہیں ہے ادھر, وہ اکیلے ہی رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, فیملیز کیا ہوتی ہے, لائک فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا کیا ہے, آپ کا کوئی تہوار آ گیا ہے, وہ آ رہے ہیں واپس کے نہیں آ رہے, اس سائڈ پہ کنسیڈر نہیں کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے, دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ باہر کی وہ لائف اسٹائل انجوائے کرنا چاہتے ہو تو آف کورس پھر اپنی فیملی بھول جاؤ. ٹھیک ہے, پھر وہ آپ 10-15 سال بعد کبھی فیملی سے ملو گے, آپ کی فیملی آپ کو نہیں پہچان رہی ہوگی, ان کو آپ کی ہیبٹس, آپ کی عادات اور آپ کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہوگا جتنا اب پتا ہے. جب آپ ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہو تو آپ کو فیملی کی زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یار ہماری فیملی کیا ہے, پیچھے کیا کر رہی ہے, کس طرح رہ رہی ہے, کس طرح ریدر دین آپ کی کیا صرف یہی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے انہیں پیسہ دینا ہے یا پھر ان کو لائف اسٹائل مینٹین کرنا ہے, آپ کی اور کوئی رسپانسبلٹی نہیں بنتی فیملی پہ.
1: بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. اور مین میں سمجھتا ہوں ڈی موٹیویشن کی وجہ یوتھ کے لیے یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی فیک لیونگ سٹائل کو دکھا رہے ہوتے ہیں, اپنی دکھ بھری کہانی وہ نہیں دکھاتے کہ کیسے وہ مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں. تو بالکل جی, جو ہماری آڈینس ہیں ان کو بالکل ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت اچھے اور ایسے سلیوشن جس سے آپ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اور سیٹسفائنگ لائف گزار سکتے ہیں. وہ سلیوشنز آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ملتے ہیں.

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक जी एफ एम 92.6 यूसीपी की दुनिया के साथ से मैं अली हसन आप खिदमत में हाजिर हूँ और प्रोग्राम हमारा चल रहा था उम्मीद नो के नेम से और अनम मेरे साथ मौजूद हैं और अब हम जाने वाले हैं सॉल्यूशंस की तरफ के कैसे और कौन कौन से वो सॉल्यूशंस हैं जिनके थ्रू हमारी जो यूथ है वो कामयाब हो सकती है ज़िंदगी में और ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकती है। तो अनम आपको क्या लगता है कि आप इस बात से कितना सेटिस्फाइड हैं और कितना एग्री करती हैं कि लर्न बाय डूइंग वर्क की स्टेटमेंट से आप किस हद तक सेटिस्फाइड हैं?
4: जी अली, लर्न बाय डूइंग जो आपने एक स्टेटमेंट यूज़ की है ये बहुत ही अच्छी है। अब जैसे हम स्टूडेंट्स को अगर कंसीडर करें, मैं इससे फुली एग्री करती हूँ कि ऐसा होना चाहिए, हमें डिजिटल लिटरेसी की तरफ जाना चाहिए, न्यू स्किल्स लर्न करनी चाहिए। अब एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसके पास क्लासेस लेने के बाद काफ़ी फ्री टाइम होता है, तो रेदर देन कि वो उसको फ्रेंड्स में वेस्ट करे, आउटिंग में, वो कभी कभार होती हैं, होनी भी चाहिए, ऐसी गैदरिंग्स होनी चाहिए, बट इन अ यूजुअल बेसिस पे अब आप देखेंगे फजूल में स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, तो उनको एज अपना टाइम जो है वो यूज़ में लाते हुए कोई न्यू स्किल्स लर्न करनी चाहिए जो मे बी उनकी डिग्री में कल को उन्हें काम आएंगी, जैसे डिजिटल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स हैं, कंटेंट राइटिंग की, फ्रीलांसिंग है, तो इस तरह उन्हें ये न्यू स्किल्स ना अप्रोच करनी चाहिए। और इसका मोटिव मेरा बिल्कुल ये नहीं है कि वो अपनी फील्ड से हट के कोई न्यू स्किल्स लर्न करें, वो अपनी फील्ड में रहते हुए भी लर्न करें। अब फ्रीलांसिंग में अब कोई इंजीनियर भी अपनी स्किल्स का परफॉर्म कर सकता है, अपनी डिग्री को परस्यू भी कर सकता है, इवन कि वो रेदर देन इन अ बींग इन अ फील्ड, फील्ड में जाने से पहले ही वो थोड़ा सा ट्रेंड होगा, जैसे उसने इंटर्नशिप्स की होंगी, उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, उसकी स्किल्स इनहेंस होंगी, तो मे बी उसके लिए कल को सोसाइटी में जाके एज अ इंजीनियर काम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसके लिए आसानी से वो कर सकेगा। ऐसी लॉ में भी है कि लॉ में अगर वो अपना जो है कैरियर परस्यू करता है, ठीक है, तो वो अगर फ्रीलांसिंग में जाता है तो वो लोगों को लीगल एडवाइस दे सकता है, इंटर्नशिप्स कर सकता है, उसके बाद वो डिफरेंट फर्म्स ज्वाइन कर सकता है इंटर्नशिप के लिए, ताकि वो स्टूडेंट लाइफ में ही एक प्रैक्टिकल लाइफ का व्यू ले ले कि भाई मुझे क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ सकती हैं, तो मुझे क्या क्या स्किल्स पहले ही आनी चाहिए, क्योंकि इन अ प्रैक्टिकल फील्ड आपको पता है बहुत कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि ऑलरेडी एक सिस्टम चल रहा होता है, उसमें आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है, ठीक है, तो अपनी जगह आप तभी बना पाओगे जब आपके हाथ में कोई स्किल्स होंगी, ठीक है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि जो स्टूडेंट और यूथ है ना, इसको लर्न बाय डूइंग की तरफ जाना चाहिए, अपने आप को डिजिटल लिटरेट करना चाहिए कि उनको डिफरेंट स्किल्स लर्न करनी चाहिए। और इसमें अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट, जो कि इसको फ्री भी सिखाते हैं, एंड इवन अगर कोई फाइनेंशियली स्टेबल है तो वो इन अ बेटर इंस्टीट्यूट भी, क्योंकि बेटर तो सभी हैं, बट कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि मैंने फलां इंस्टीट्यूट से करना है, तो वहां से भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है।
3: बिल्कुल ऐसे ही अनम, बिल्कुल आपने 100% ठीक कहा। और ये बात है कि अगर हम पार्ट टाइम भी अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी के साथ साथ, अपनी डिग्रीज़ के साथ साथ, मैं समझता हूँ कि हम दिन में सिर्फ 2 घंटे भी अगर किसी एक स्किल को भी देते हैं, जैसे कि मेरा ताल्लुक फेसबुक मार्केटिंग से है, तो मुझे याद है कि मैं 9th क्लास में सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा इस चीज़ को देता था कि कैसे मैं फेसबुक पे कोई चीज़ बेच सकता हूँ या कैसे सेल कर सकता हूँ। और मुझे याद है कि मैंने फर्स्ट टाइम एक कार का एड लगा के टेस्ट किया था। सो हमारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इंसान के पास 2 ऑप्शंस हैं, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास बेस्ट ऑप्शन है कि वो जा सकता है, अब बैठे कंप्यूटर लैब्स में बैठे, अगर वो मीडिया फील्ड से है रेडियो स्टूडियोस विजिट करे, लॉ से है वो मुख्तलिफ एडवोकेट्स के चैम्बर्स को विजिट करे, उनकी बैठ के डिस्कशन सुने, सो अपनी स्किल्स, न्यू स्किल्स को बेशक अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग बिल्ड करे, लेकिन करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन उसके पास बड़ा वाजह होता है कि वो क्लास ले, क्लास लेने के बाद अपने क्लास के दोस्तों के साथ जाए, चाय कैफेज पे बैठे, वहाँ बैठ के चाय पिए, वहाँ गपशप लगाए और अपना दिन ज़ाया कर दे। तो मैं समझता हूँ मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीज़ों को परफॉर्म करना चाहिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन अपने पूरे दिन में कुछ ऐसा वक्त रखना चाहिए जो आप कुछ प्रोडक्टिव करें, कुछ ऐसा करें जिससे आप फ्यूचर में कुछ बेहतर कर सकें। सो अनम, आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ ठीक है कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ, क्योंकि अगर एक किसी का ताल्लुक लॉ से है या किसी का ताल्लुक किसी और फील्ड से है, इंजीनियरिंग से है, सो आपको क्या लगता है कि आज क्या वक्त की ये ज़रूरत है कि हमें एक इंजीनियर या एक लॉयर को भी साथ साथ मीन्स एक दिन में 2 से 3 घंटे दे के फ्री लॉन्चिंग की फील्ड से पैसे कमाने चाहिए?
4: आई एग्री विद इट कि भाई अगर एक स्टूडेंट है तो वो उसके पास अगर टाइम है, क्योंकि मोस्टली 1-2 घंटा निकालना वो बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप 24 घंटों में से आप मैनेज कर सकते हो, आप थोड़ा अपना लेयर टाइम जो है उसको थोड़ा मिनिमाइज करके 1-2 घंटे तो इज नॉर्मल थिंग, आप ऐसे वेस्ट कर देते हो इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रोलिंग में, तो आपको कुछ न्यू स्किल्स सीखनी चाहिए और एट द एंड वो फाइनेंशियली आपको हेल्प, आजकल की जनरेशन का एक सबसे मेजर होना भी यही है कि भाई उसको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, उसको इंडिपेंडेंट होना है घर से, उसको ना लाइक पैसे नहीं लेने कि उसके अपने कमाई आनी चाहिए उसके हाथ में, तो वो मेरा ख्याल है कि अगर वो इस तरह स्टडीज़ के साथ साथ थोड़ी माइनर सी एफर्ट्स करेगा इन सीखने में, न्यू स्किल सीखने में, तो वो उसके लिए बेटर होंगी और उसको कल को फील्ड में भी काम देंगी एज वेल एज उसको फाइनेंशियली भी स्टेबल, तो ये बहुत बेस्ट रहेगा अगर स्टूडेंट्स जो हैं यूथ जो हैं वो इस बात की इसको इम्पोर्टेंट लेंगे कि ये बहुत इनिशियल स्टेप है जो उनको लेना चाहिए अपनी स्टडीज में, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज को।
3: बिल्कुल ऐसे ही है। और अनम, अगर आप देखें कि न्यू आइडियाज़ की जो क्रिएशन है, ये न्यू आइडियाज़ हमारी यूथ में आना ख़त्म क्यों हो गए हैं या कम क्यों हो गए हैं, मैं समझता हूँ उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं डिजिटल डिवाइसेस के साथ, हम दिन रात हम अगर देखें अपना सर्कल तो हमारा स्क्रीन टाइम 4 से 5 घंटों पर चला गया है, हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं रील्स वॉचिंग में और इन चीज़ों में, हम कुछ क्रिएटिव नहीं देख सकते। मैं कल रात ही एक दोस्त के पास बैठा था तो वो मुझे एक मीम दिखा रहे थे, तो फनी तो थी लेकिन उसमें एक बड़ी मोटिवेशनल चीज़ मुझे देखने को मिली और सुनने को मिली, मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा कि वो मुझे कहते हैं कि ये देखो यार मीम में वो क्या कह रहा है कि एक अगर न्यूटन बैठे होते उस टाइम जब उनके ऊपर एक एप्पल गिरा और उनको ये ख्याल आया ग्रेविटी का सब, तो अगर वो उस टाइम रील्स देख रहे होते या वो इंस्टा पे लगे होते तो उनका उस तरफ ख्याल ही नहीं जाना था कि सेब क्यों गिरा, और मतलब वो गिरने के बाद वो ना सोचते कि ग्रेविटी भी कोई चीज़ होती है, वो फ्री बैठे थे, फ्री बैठे तो उनके माइंड में एक न्यू आइडिया आया कि यार ये सेब क्यों नीचे की तरफ ही क्यों गिरा है, तो उन्होंने ग्रेविटी की इन्वेंशंस की तरफ वो मूव ऑन किए। सो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए अपनी ज़ात के लिए जो वक्त है वो निकालना हमने ख़त्म कर दिया, तो क्या आप इस बात से एग्री करती हैं कि आज के दौर में हम अपने लिए वही वक्त बस निकालते हैं जो हम 2 से 4 घंटे सो रहे हैं, उसके अलावा हम अपनी ज़ात के लिए वक्त नहीं निकालते, ना हम जॉगिंग करते हैं, ना हम पार्क्स में बैठते हैं, ना हम लाइब्रेरी को वक्त देते हैं, ना हम किताबों को वक्त देते हैं, ना हम अपनी ज़ात की तरक्की के लिए काम करते हैं, तो क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड हैं?
4: ऐसा ही है, आजकल अगर आप देख लें तो डिजिटल इतना को माइंडसेट माइंड पे बैठ गया हुआ है डिजिटली कि भाई फ़ोन होना चाहिए आपके, आपका फ़ोन 2 मिनट चार्जिंग पे लग जाए तो आप पैसे फ्री होते हो, अब क्या करें, अब क्या करें हम ना अगर फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया या लैपटॉप लगा, और यही अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप किसी को बोलोगे ये आर्टिकल पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, तो वो क्या सोचेंगे, इससे अच्छे हम कोई मूवी देख लेते हैं, ठीक है, दे विल नॉट एडमायर इट कि चलो यार कोई बुक पढ़ लेते हैं, ठीक है कोई नॉलेज की बात होगी उसमें, लेकिन उनको फजूल में टाइम वेस्ट करना पसंद होगा, वही टाइम वो क्रिएटिव वे में यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, वो अब आप ये भी कह सकते हो कि वो आलसी भी हो गए या फिर वो सिर्फ कहते हैं कि हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम उसको कर नहीं रहे, ठीक है, एक्शंस भी रिक्वायर होते हैं, सिर्फ बात करने से कोई काम नहीं हो जाता, अभी हम बात कर रहे हैं तो इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा अनलेस कि वो जो सुनने वाले हैं या फिर जो हम हैं खुद इस पे एक्शन नहीं लेंगे अपनी बात पे कि भाई हमें अब वाकई में अपने बारे में सोचना चाहिए, वी शुड कंसर्न आवर सेल्फ के हमारी बेहतरी किस में, वो रेदर देन कोई न्यू स्किल सीखने में है, कोई नया काम, कोई अपनी नॉलेज बढ़ाने में है, आप अपनी हेल्थ की फिक्र करें। अब आप एक स्टूडेंट को देख लें, वो क्या करेगा, सुबह उठेगा یونیورسٹی آئے گا, کلاسز لے کر جا کے اس نے سکون سے لیٹ جانا ہے اور موویز دیکھنی ہے, صبح پھر وہ اٹھے گا پھر آج وہ اس کی ایکسرسائز کی روٹین اور اس کی وہ فرینڈ سرکلز میں بیٹھنا, نیو اسکل سیکھنا, یہ کسی سائڈ پہ نہیں آئے گا کہ وہ کوئی کریٹو کام کرے. اور پھر بعد میں اسٹوڈینٹس کیا کمپلین کرتے ہیں, ہم ڈپریشن کا شکار ہیں. تو ڈپریشن تو ہوگا نا جب آپ کی لائف صرف اسکریننگ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے.
3: بالکل ایسی. اور اسٹوڈینٹس کہتے ہیں ہماری ڈگری کی کوئی ورتھ نہیں ہے پاکستان میں, ہماری ڈگری کی ورتھ نہیں ہے. وہ ورتھ کیسے ہو ڈگری کی جب آپ نے اس ڈگری سے کچھ سیکھا ہی نہیں. یہی ڈگری آپ سیم بیک ٹو دا ٹاپک آ رہا ہوں کہ آپ واپس کسی اور آؤٹ آف کنٹری جا کے سیکھتے ہیں تو وہ آپ کو جب پریکٹیکل اسٹڈیز کرواتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ڈگری کی بڑی ورتھ ہے, بڑا کچھ ہم نے سیکھا ہے. تو آپ یہاں پہ سیکھیں, ملٹیپل اپرچونیٹیز آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. آپ کی ڈگری کے ڈیورنگ آپ ملٹیپل انٹرنشپس کر سکتے ہیں, ان انٹرنشپس کو کریں اور سیکھیں کہ آپ کیا اس اسکل سے کیسے ارن کر سکتے ہیں, اپنی فیلڈ میں کیسے ارن کر سکتے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ ایک پوائنٹ ہی آتا ہے ارننگ کا, ٹھیک ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے خود اپنی ذات پہ یہ چیز آزما کے دیکھی ہے کہ ایک نائنتھ کلاس کا اسٹوڈنٹ کیا وہ وائب ہوتی ہے. کہ میں ایک نائنتھ کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں نے جب پہلی دفعہ 30,000 روپیہ کمایا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. تو وہ 30,000 جب میں نے جا کے اپنی مدر کے ہاتھ میں رکھا تھا تو وہ ایک الگ ہی ایک وائب ہوتی ہے, ایک انسان میں ایک الگ بات ہوتی ہے کہ یار میں اتنا چھوٹا ہوں اور میں نے پیسے کما لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا. سو ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ اسٹڈیز کو بھی کنٹینیو کیا, ٹھیک ہے. آپ اپنے ایمز کو چھوٹا نہیں کر سکتے, آپ اپنی بیسک فیلڈ کو چینج نہیں کر سکتے کہ آپ ایل ایل بی کر رہے ہیں اور آپ کہیں کہ یار میں ساتھ ساتھ فری لانسنگ اسٹارٹ کروں. فری لانسنگ سے آپ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ کمانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کون ایل ایل بی, کون سی میری ڈگری, میری تو فیلڈ ہی ہے. نو, ناٹ ایٹ آل. یہ وہ کام ہیں جن کو آپ کو ساتھ کرنا ہے اور آج وقت کی ضرورت ہے. آج ایک انسان گھر نہیں چلا سکتا, گھر چلانے کے لیے اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو ملٹیپل کام کرنا پڑتے ہیں. تو انم آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے ہمارے سیشن کے بعد کیا یوتھ اور ہماری آڈینس جو سن رہی ہیں وہ موٹیویٹ ہوں گی اور وہ نیو اسٹارٹ اپ لیں گی؟
4: میرا خیال ہے انشاءاللہ اگر انہوں نے اپنے بارے میں یا اپنا فیوچر برائٹ رکھنا ہے تو وہ ضرور اس پہ کنسیڈر کریں گے, ٹھیک ہے. اور ان کو اس کی ویلیو بھی کنسیڈر کرنی چاہیے کہ آج کل کے دور میں ملٹیپل انکم سورسز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ریدر دین کہ فیملی کا کوئی ایک فرد ہی کما رہا ہو. تو یہ آج کل کا میجر ایشو ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ یوتھ کو واقعی میں برین اسٹارمنگ کرنی چاہیے اور ان کو اس پہ انیشیل اسٹیپس لینے چاہیے کہ بھائی ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے. تھینک یو سو مچ.
3: بالکل انم, بالکل ویلکم. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا انم. اور پروگرام کا اختتام ایک نہایت ضروری میسج سے کرنا چاہوں گا کہ آج ہی, کل پہ مت چھوڑیں, آج ہی یہ سوچیں کہ آپ کو کچھ کرنا ہے. اور کرنے میں جو مین اور بیسک اور پہلی ہرڈل جو آپ فیس کریں گے وہ آپ کی اپنی ڈیجیٹل ڈیوائسز, آپ کا موبائل فون ہوگا, آپ کے ٹیبز, آپ کے لیپ ٹاپ, جو آپ کے نیٹ فلکس کے نام پہ اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے نام پہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ان سے دور ہوں, اسکلس کی طرف آئیں, فری لانسنگ کی طرف آئیں. اور یقین مانیں پاکستان میں بہت زیادہ ایسی اپرچونیٹیز ہیں, ان کو اپنی آنکھوں کے پردے کھولیں اور دیکھیں کہ باہر ہو کیا رہا ہے اور اس کو اویل کریں, اپنی گیدرنگ چینج کریں. اور ایک بہت ہی فیمس مسٹر ایڈورڈ سائیکالوجسٹ ہیں, ان کی سیئنگ ہے کہ چینج یور ٹیبل وین یو آر ناٹ سیٹسفائنگ وتھ یور لائف. تو اگر آپ اپنی لائف کے ساتھ سیٹسفائڈ نہیں ہیں تو آج ہی اپنے ٹیبل کو چینج کریں. ٹیبل کو چینج کرنے سے مراد ہے اپنی گیدرنگ کو چینج کریں, اپنی محفل کو چینج کریں. پروڈکٹیو دوستوں میں بیٹھیں, پروڈکٹیو لوگوں میں بیٹھیں, ان لوگوں میں بیٹھیں جو آپ میں ایک پازیٹیو وائبس کریٹ کر سکیں. آپ میں نگیٹو چیزیں امپارٹ کرنا, آپ کو بری محفلوں کی طرف لے جانا, آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا اور آپ کو یہ فیل کروانا کہ آپ نے کوئی گناہ کر دیا پاکستان میں پیدا ہو کے, تو یہ اس طرح کے لوگوں سے بچیں. پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو کریں اور صبر اور یقین کے ساتھ بس محنت کریں اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر رہے اور آپ کو آپ کی محنت کا اجر انشاءاللہ آج نہیں کل نہیں اور نزدیک فیوچر کے اندر انشاءاللہ آپ اپنے ریزلٹس دیکھیں گے کہ وہ امپروو ہوں گے. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حسن کو اجازت دیجیے. اللہ

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 ओनली ऑन एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, आपके अपने प्रोग्राम जुगनू के साथ हाजिर है मोहम्मद हमादुर रहमान, हेड ऑफ वॉलंटियर्स इन सर्विस डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, लाहौर। प्रोग्राम जुगनू पेश किया जाता है आपको VIS डिपार्टमेंट के पार्टनर इदारों से रोशनास करवाने के लिए हर मंगल सुपहर 3 बजे। सामीन इकराम, बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी मुश्किलात को नजरअंदाज करके दूसरों की मदद करते नजर आते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह अल्लाह ने इनको बहुत नेमतें दी हैं और फिर भी वो दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की मदद के लिए कोशिशें करते नजर आते हैं। इसी तरह के कुछ लोग आज हमारे पास मौजूद हैं मेहमान के तौर पर। आज जिस इदारे का तारुफ हम लेकर हाजिर हुए हैं उसका नाम है अलगौर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। तो राशिद इकबाल साहब हमारे पास मौजूद हैं जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अलगौर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के। जनाब राशिद इकबाल साहब, वेलकम टू द शो सर।
3: बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।
2: राशिद भाई, थोड़ा सा अगर तारुफ आप करवा सकें इसका अलगौर का, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा आपके मुंह से सुनना आपके इदारे के बारे में।
3: जी जरूर। सर, अलगौर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी हम लोगों ने ग्रीन टाउन के एक छोटे से एरिया में 1996 में रजिस्टर्ड करवाई थी। उसका पीछे सोच ये थी, मेरे अंकल हैं शेख इम्तियाज साहब, अपना बिजनेस करते थे और शुरू से उनकी सोच ये थी कि मैं कुछ गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दे सकूं, उसको किताबें दे सकूं, यानी वो लोग जो नहीं अपने खर्चे पे पढ़ सकते हम उनके लिए कुछ कर सकें। तो 2001 में हमने स्कूल स्टार्ट किया गौर एजुकेशन सिस्टम के नाम से, जो कि लाहौर बोर्ड से रजिस्टर्ड भी करवाया गया, एफिलिएट भी करवाया गया। तो उस वक्त से लेकर अब तक हम लोग तकरीबन कोई 3000 के करीब स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ा चुके हैं, उनकी बुक्स भी दे चुके हैं, यूनिफॉर्म भी और मेडिकल फैसिलिटीज भी। तो अल्लाह ताला मदद करता रहा, ये अपनी मदद आपके तहत हमने स्टार्ट की थी विदाउट एनी डोनेशन। मेरे जो चचा हैं इम्तियाज साहब, उन्होंने अपने ही बिजनेस से एक छोटा सा फंड अरेंज किया और इन बच्चों पे खर्च करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो कामयाबी से चल रहा है। तो बाकी भी हम चाहते हैं इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं से हम इस तरह करते रहें और ये चलता रहे।
2: माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त। अच्छा राजीव भाई, ये बताइए कि आप किस क्लास तक कैटर करते हैं बच्चों को, क्या मैट्रिक तक है या उससे?
3: जी हम लोग जी प्ले ग्रुप से स्टार्ट करते हैं और मैट्रिक तक है।
2: मैट्रिक तक।
3: और जैसा कि मैंने बताया कि ये एफिलिएटेड इदारा है, तो बच्चों के रेगुलर एडमिशन और ये सारी चीजों का हम अरेंज करते हैं।
2: माशाल्लाह, तो जब मैट्रिक तक आप लेके जाते हैं स्कूल को, तो उसमें तो और भी बहुत से खर्चे बढ़ जाते हैं, लाइक लैब बनानी पड़ती है आपको, साइंस की लैब्स और कंप्यूटर लैब्स वगैरह, वो भी फिर होंगी इसका मतलब है अल्कोहल?
3: जी अच्छा, ये मैं बताता चलूं कि शुरू में क्योंकि चचा ने ये स्टार्ट किया था, तो फिर जाहिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस बढ़ते रहे, जैसा कि आपने फरमाया लैब्स की जरूरत थी, लाइब्रेरीज की जरूरत थी, और बच्चों के जाहिर एक्सपेंसेस बढ़ते रहे। तो फिर हम लोगों ने एक अडॉप्ट अ चाइल्ड प्रोग्राम के नाम से एक छोटा सा प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि कोई भी दोस्त जानने वाला या डोनर, वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले और अडॉप्ट करके उस बच्चे के तालीमी खराजत बर्दाश्त करना शुरू कर दे। तो उसमें बहुत सारे हमारे अपने ही दोस्त जानने वाले आगे आए और उन्होंने कुछ बच्चों को अडॉप्ट भी किया और उनके एक्सपेंसेस को बेयर किया। तो अडॉप्ट अ चाइल्ड प्रोग्राम में हम लोगों ने जो फी पे कर सकता है कुछ बंदा, वो 4000 पर स्टूडेंट है पर मंथ, जिसमें बच्चे की एजुकेशनल एक्सपेंसेस प्लस बुक्स, यूनिफॉर्म और ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है, और एडमिशन्स के मामला जो बोर्ड के जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के मामला उसमें शामिल है। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आकर जुड़े और इस तरह करके हम बच्चों के एक्सपेंसेस दे पा रहे हैं।
2: माशाल्लाह जी, अल्लाह आपको और तौफीक दे जी और लोगों को आपके साथ जोड़े। राजीव भाई, ये बताएं कि आप जब एडमिशन लेते हैं बच्चे का, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि किस इनकम के लेवल से, कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या कोई भी आगे एडमिशन ले सकता है आपके?
3: जी इसमें मैं बता देता हूँ आपको, हमारे पास हम जिस एरिया में बैठे हुए वहाँ पे सारे लो इनकम फैमिलीज हैं, सारी की सारी, ज्यादातर लोगों को हम जाती तौर पर जानते हैं, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी स्कूल में पढ़े, क्योंकि हमारी वहाँ पे थोड़ा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो हमें फी पे करते हैं खुद से, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर हम उनको जानते हैं तो हमें पता है फैमिली कैसी, अगर ना जानते हो तो फिर हम उनकी घर विजिट करके सारा चेक कर लेते हैं और इस तरह बच्चों को सपोर्ट करते हैं।
2: राइट। तो آپ اس کے علاوہ بھی بتا رہے تھے کچھ میڈیکل کے حوالے سے بھی آپ نے تھوڑا ایکسپینشن کیا ہے, تو میڈیکل فیلڈ میں آپ کیا کس طرح سے رول پلے کر رہے ہیں جی صحت کے حوالے سے؟
3: جی جی, شروع میں تو ہم لوگوں نے میڈیکل فیسلٹیز دینی شروع کی تھی اپنے بچوں کو, جیسے آئی کیمپ لگوا دیا جاتا تھا اور ان کو چھوٹے چھوٹے کیمپس لگا کر ہم ان کو میڈیکل فیسلٹیز دیتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے اپنے اسی ادارے میں میڈیکل کی ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ قائم کر لیا, اور اس میں ہم اب کیمپ لگاتے ہیں ہیپاٹائٹس کے, مختلف جو ہمارے قریب انڈسٹری ہے وہاں جا کر, اور ابھی ہم لوگوں نے فلڈ جو آیا اس کے سلسلے میں بھی ہم لوگوں نے میڈیکل کیمپ لگایا. ہمارے پینل پہ کچھ ڈاکٹرز ہیں اور کچھ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جو ہمیں فری میڈیسن پرووائڈ کر دیتی ہیں, اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ فری ہمیں اپنی سروسز پرووائڈ کر دیتے ہیں. اس طرح ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم کچھ میڈیکل کیمپس بھی لگاتے رہتے ہیں.
2: اچھا, اس کے لیے آپ سلیکٹ کیسے کرتے ہیں ایریاز کہ آپ نے کہاں پہ جا کے ہیلتھ کیمپ لگانا ہے یا میڈیکل سروسز پرووائڈ کرنی ہے, اس کی سلیکشن کا کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے, کیسے آپ چوز کرتے ہیں؟
3: اچھا رحمان بھائی, اس میں ایسا ہے کہ جس ایریا میں بیٹھے ہوئے نا وہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ بیسک فیسلٹیز ہی نہیں ہیں, تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ایریا میں ہی کیمپ لگایا جائے, اور پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے, تو اس طرح کی کمپنیز کے ساتھ مل کر ہم لوگوں کو فیسلٹی اپنے ایریا میں ہی دیتے ہیں, کیونکہ وہ ایریا اتنا بیکورڈ ایریا ہے کہ آپ وہاں پہ ہر چیز کی ضرورت ہے اس وقت, وہاں پہ تعلیم کی ضرورت ہے, وہاں پہ میڈیکل کی ضرورت ہے, وہاں پہ صاف پانی کی ضرورت ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ایریا کو بھی فیسلیٹیٹ کریں.
2: رائٹ جی, آپ ایون ایجوکیشن پہ ہی کام کر لیں تو وہ بھی بہت واسٹ فیلڈ ہے. ماشاء اللہ بڑا کنٹریبیوشن آپ کا کہ جی آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ صحت کی فیسلٹیز بھی وہاں پرووائڈ کر رہے ہیں. تو آپ کا اسکول میں نے وزٹ کیا تھا, ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی بچوں کو دیکھ کے, وہاں پہ بڑے ہنستے مسکراتے چہرے اور بڑے خوش خوش ماشاء اللہ بچے وہاں پر ہمیں نظر آئے. تو آپ کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں کیا وہ بھی اسی ایریا سے ہیں یا وہ کسی دوسرے ایریا سے بھی ہو سکتے ہیں؟ ٹیچرز کو بھی آپ وہیں سے ہائر کرتے ہیں کیا امپاور کرنے کے لیے لوگوں؟
3: جی جی جی, ہم لوگ ٹیچرز کو بھی اتنی ایریا سے ہی ہائر کر رہے ہیں, اور میں بتاؤں وہ ایریا میں ٹوٹل فیسلٹیز تو نہیں ہیں, لیکن ہر سال بورڈ کی ایک پوزیشن اسی ایریا میں سے ہی نکلتی ہے, تو ایریا اس حوالے سے بڑا اچھا ہے کہ بڑے لائک بچے وہاں پہ ہیں اور بڑی کم فیسلٹیز کے ساتھ بورڈ کی پوزیشن لیتے ہیں, تو اچھے ٹیچرز ہمیں مل جاتے ہیں. پرابلم یہ آ رہی ہوتی ہے کہ ٹیچر کو ہم اچھا پے نہیں کر پا رہے ہوتے, کیونکہ ہمارے پاس سارے ریسورسز نہیں ہیں, بہرحال پھر بھی ٹیچرز ہم وہیں سے لے رہے ہیں. اب تو اس قابل ہو گئے ہیں ہمارے اپنے ہی اسٹوڈنٹس جو ہم سے ہی پڑھ کے گئے, اب وہی ہمیں فیسلٹیٹ کر رہے ہیں, لو کاسٹ پہ وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ جن حالات میں انہوں نے پڑھا ان کو پتہ ہے کہ یار بڑے کم فیسلٹیز میں ہم پڑھے ہیں, تو اب وہ ظاہر ہے وہی ہماری ہیلپ کے لیے کھڑے ہو گئے ہمارے ساتھ, تو ہم لوگ لو کاسٹ پہ پھر انہیں کو لے لیتے ہیں اور ہم پڑھا رہے ہیں انشاءاللہ.
2: رائٹ, تو ہم بات کر رہے ہیں جی جناب راشد اقبال صاحب سے جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں الکوہر ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے. مزید گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اس وقت ٹائم ہوا ہے ایک شارٹ میوزیکل بریک کا, سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं जनाब राशिद इकबाल साहब से, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अलकोहल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के। राशिद भाई, बात हो रही थी ग्रीन टाउन के एरिया की, जहां पे आपने मेनली फोकस कर रखा है। आपने बताया कि वहां पे एसेट्स, बहुत सी फैसिलिटीज ऐसी हैं जो नहीं अवेलेबल वहां पर लोगों को। देन वाई स्टार्ट विद एजुकेशन, ये आपको ख्याल कैसे आया कि एजुकेशन से ही स्टार्ट लिया जाए? कोई और फैसिलिटी भी हो सकती थी, हो सकता है आप हेल्थ से स्टार्ट करते हैं वहाँ पे।
2: अच्छा रहमान भाई, ऐसा था कि क्योंकि हम लोगों ने जब खुद भी पढ़ा तो हमें तब भी लगा कि यार ये एक पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और माशरे में देखा भी कि फैमिली में अगर एक कोई बच्चा आपने पढ़ा दिया है तो पूरी फैमिली चेंज हो जाती है, अगर पूरी फैमिली चेंज होगी तो पूरा माशरा चेंज हो जाता है। तो उस वक्त हम लोगों का ये शुरू से वैसे ख्याल था कि हम लोग एजुकेशन पे ही काम करेंगे, और पीछे नजरिया यही था कि माशरा चेंज करना है। तो हम लोगों ने फिर सबसे पहले इसी पे भी वर्किंग की, और जिस एरिया में हमने वर्किंग की उसमें हमने देखा कि बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा मेच्योर होता है, तो उनको किसी मोटरसाइकिल मैकेनिक के साथ जोड़ दिया जाता है, किसी वर्कशॉप में काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हम लोगों ने फिर कोशिश की कि सबसे पहले हम एजुकेशन पे ही वर्किंग करें, ताकि ये जो बच्चे फैक्ट्रीज में जाते हैं, कारखाने में जाते हैं या किसी मैकेनिक के साथ जुड़ जाते हैं, इनको निकाला जाए। तो उसमें फिर देखा जो मुश्किलात आई हमें, वो यही थी कि जी बच्चा कमा कर ला रहा है थोड़े बहुत पैसे। हमने उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया, और कन्विंस करने के बाद हमने मुफ्त तालीम के, पैसा नहीं लिया जाएगा, बच्चों को बुक्स भी दी जाएंगी, यूनिफॉर्म भी दिया जाएगा। मुश्किलात बड़ी आई, बहुत सारे पेरेंट्स ने बुक्स भी ली, यूनिफॉर्म भी लिया और बच्चे को नहीं भेजा। तो फिर हम लोगों ने उनको बहुत सारी और अट्रैक्शंस भी दी कि बच्चे को शाम को एकेडमी पढ़ाया जाएगा, बच्चे को मेडिकल फैसिलिटीज फ्री दी जाएंगी, बच्चे को दीनी तालीम फ्री दी जाएगी। तो बल्कि हमें वहाँ पे एक और इशू ही आया उस वक्त कि मुसलमान बच्चे तो थे ही थे, उस एरिया में क्रिश्चियन बच्चे बड़े थे। तो जब हमने पहली दफ़ा स्कूल स्टार्ट किया तो 600 के करीब बच्चा वहाँ पे एडमिशन उसका हुआ, और उसमें हम लोगों ने फिर दो सेगमेंट बनाए, 200-250 बच्चा क्रिश्चियन था, 200-250 बच्चा मुसलमान था। तो दीनी तालीम के लिए क्रिश्चियंस के लिए हम फिर एक, हम लोगों ने उनके एक रिलीजियस बंदे को भी हायर किया एज ए टीचर, जो उनको उनकी तालीमात देता था, और मुसलमान बच्चों के लिए कुरान पाक की तालीम लाजमी थी। तो तब से लेकर अब तक क्रिश्चियन बच्चे तो कम हो गए, लेकिन मुसलमानों के लिए, बच्चों के लिए हमारे पास कुरान पाक की तालीम बिल्कुल कंपलसरी है, जिसको हम लेकर चल रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है, प्ले ग्रुप से फिफ्थ तक हम कुरान पाक कम्प्लीट करवा देते हैं बच्चे को, और उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो जो आपने क्वेश्चन किया था कि तालीम से ही क्यों स्टार्ट किया गया, तो तालीम की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमने सबसे पहले यही सोचा कि तालीम को ही पहले फोकस किया जाए।
1: नो डाउट जी, एजुकेशन की अहमियत बहुत ज़्यादा है माशरों की तरक्की में। अगर आप देखें जो तालीम याफ्ता माशरे हैं, वो आपको तरक्की याफ्ता भी नज़र आते हैं
2: जी।
1: और हमारे यहाँ तालीम का जो मेयार और जो परसेंटेज है लिटरेसी की, वो बड़ी अलार्मिंग है। हम देखें तो 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। वाकई इस तरह की एफर्ट्स की बहुत ज़रूरत है, जैसे आप कर रहे हैं माशाल्लाह। तो हमने जब स्टार्ट लिया आपने स्कूल का, तो उसमें शुरू में किस तरह का रिस्पांस था लोगों का? जैसे आपने बताया कि लोग यूनिफॉर्म लेके और फैसिलिटीज लेके बच्चों को घर बिठा लेते थे उसके बाद, या कहीं काम पे भेज देते थे, तो कैसे फिर आस्ता आस्ता पिकअप हुआ? ये इस्लामी तालीम ने ज्यादा अट्रैक्ट किया लोगों को, या जो आपने बताया कि एजुकेशन फैसिलिटीज भी दे रहे थे उसकी वजह से ज्यादा अट्रैक्ट हुए? और शुरू में क्लासेस आपने कौन सी स्टार्ट की थी? स्ट्रेट अवे तो ज़ाहिर मैट्रिक तक आपने स्टार्ट नहीं किया होगा।
2: अच्छा रहमान भाई, इसमें हमने शुरू में तो 5th क्लास तक स्टार्ट किया था, और मुश्किलात आई, बहरहाल रिस्पॉन्स तो अच्छा मिला, हर बंदा चाहता है मेरा बच्चा पढ़े। लेकिन जब बच्चा स्कूल पहुंचा तो उन्हें लगा कि वो इनकम का जो उनका था जरिया, वो माइनस हो गया है, रुक गया है, तो फिर वो पीछे हटना शुरू हो गया। लेकिन ओवरऑल रिस्पांस अच्छा आता है, पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है मुश्किलात हैं लोगों के लिए। वहाँ पे ग्रीन टाउन में 5 मरले के घर हैं, बहुत लो मिडिल क्लास लोग रहते हैं, और 3-3 फैमिलीज रह रही हैं। तो मुश्किलात तो आई, लेकिन रिस्पांस अच्छा था, हर बंदा चाहता है मेरा बच्चा पढ़े। लेकिन बाद में उनको एहसास होता है कि वो ये चीज़ें तो माइनस हो गई, ये तो चीज़ें रुक गई, तो फिर लोगों ने अपने बच्चों को पीछे हटाना शुरू किया। लेकिन ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है, अब तो चीज़ें बड़ी चेंज हो गई। अब हमारे एरियाज में बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा फ्री स्कूल हैं, और सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और अपने अपने तौर पर अच्छी तालीम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने जैसा कि बताया कि उस एरिया, वो इतना जरखेज़ एरिया है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हर साल बोर्ड की एक पोजीशन लाजमी निकलती है। लेकिन लाहौर इतना बड़ा है, 2.5-3 लाख बच्चा अपेयर होता है बोर्ड में, और एक दो पोजीशन ग्रीन टाउन के एरिया से निकलना एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरखेज एरिया है वो। हाँ, प्रॉब्लम्स ये हैं, गरीब लोग हैं, बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर मेरे और आप जैसे दोस्त, अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत दी भी है कि इन बच्चों की को सपोर्ट करें और इनको सपोर्ट से एक अच्छा बच्चा वहाँ से निकले, तो वो निकल रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि हम कामयाब हो रहे हैं अपनी एफर्ट्स।
1: माशाल्लाह जी, अल्लाह आपकी इन एफर्ट्स में मजीद बरकत डाले और मजीद लोगों को भी तौफीक दे कि वो इन चीज़ों पे काम कर सकें। एजुकेशन पे आपने काम शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता आपने फिर क्लासेस बढ़ाई, फिर जैसे जैसे ज्यादा बच्चे होते गए, ज़ाहिर जो पहले शुरू में है वो आगे प्रोग्रेस करते गए, तो क्लासेस बढ़ती गई, तो उस पर डोनर्स में भी इजाफा हुआ माशाल्लाह उसी तरह से, या अपने एंड से कंट्रीब्यूशन में इजाफा हुआ, कैसे आपने फिर इसको मैनेज किया?
2: अच्छा मेहमान भाई, इसमें हमें बस यही एक रिक्वेस्ट है कि हमें डोनर्स उस तरह सपोर्ट नहीं मिल रही डोनर्स एंड पर, हम अपनी मदद आपके ही तहत ही चल रहे हैं कि हम अपने कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं, कुछ हमारे दोस्त टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं और अपनी इनकम से कंट्रीब्यूट करके तो हम ये अदारा चला रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ हमारे दोस्त आकर मिले और अडॉप्ट अ चाइल्ड वाले प्रोग्राम में आएं, बच्चों को अडॉप्ट करें और उनको फैसिलिटेट करें कि वो अपनी तालीम को आगे कंटिन्यू रख सकें। तो इस हवाले से थोड़ी मुश्किलात का सामना ज़रूर है कि डोनर्स हमारे पास नहीं हैं, और वो जो मुखैर हज़रात हैं उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि वो हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस कार्य खैर को आगे बढ़ा सकें।
1: राइट, राजेश साहब ये बताएं कि ये जो आपके बच्चे माशाल्लाह वहाँ से पास आउट होते हैं, मैट्रिक के कितने सेशन अभी तक आपके पास आउट हो चुके हैं वैसे अंदाजन को?
2: हमारे मैट्रिक के मेरा ख्याल है अगर 10-12 के करीब
1: पास आउट हो चुके होंगे। राइट, तो आपने जैसे बताया कि गरीब घरानों के बच्चे हैं और आगे मे बी एट टाइम्स कंटिन्यू नहीं कर पाते होंगे एजुकेशन, तो क्या इस तरफ कभी आप लोगों का ध्यान गया कि कोई वोकेशनल ट्रेनिंग का भी कुछ सिलसिला शुरू करें या कुछ करवा रहे हैं ऑलरेडी इस तरह से?
2: अच्छा सर, हमारे एरियाज में ना काफी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इस साल ये स्टार्ट किया, कोरोना के बाद हमें ये चीजों का पता चला कि कुछ बच्चे के पास स्किल होनी चाहिए, तो अब हमने इस साल से वर्किंग स्टार्ट की IT स्किल्स के ऊपर, कुछ IT कोर्सेज हम बच्चों को ऑफर कर रहे हैं और फिर ऑनलाइन अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको तैयार कर रहे हैं। इस साल ये पहला साल है हमारा, तो इसमें हम वर्किंग स्टार्ट कर दी भी है, इसमें भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ डोनर्स हजरात सामने आए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अकोमोडेट कर सकें।
1: राइट, उसमें आपने जो कंप्यूटर लैब्स एस्टैब्लिश की होंगी जरा उसके लिए?
2: जी, एक छोटी सी कंप्यूटर लैब एस्टैब्लिश की है हम लोगों ने, और क्योंकि रिसोर्सेज कम हैं हम चाह रहे हैं कि बच्चे आगे आएं, क्योंकि इर्द गिर्द अब एरियाज हम देख रहे हैं कि बच्चे ऑनलाइन वर्किंग पर काम करके अर्निंग की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोगों ने भी इसके ऊपर अब वर्किंग स्टार्ट की है। अभी हमारे पास रिसोर्सेज जितने थे उससे एक छोटी सी लैब बनाई है और कोई 20-25 बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड भी हो गए पढ़ने के लिए, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले 3-4 माह में आप देखेंगे कि काफी अच्छा इस पे काम होगा इंशाल्लाह।
1: राइट, तो राजेश साहब ये जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसके कुछ चार्जेस लेते हैं आप?
2: अभी क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो हमने बड़े नॉमिनल चार्जेस 2,000 रुपीज रखे हैं पर मंथ, और लेकिन फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कुछ दोस्त अगर डोनर्स हमारे साथ मिले आकर तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी बच्चों को पढ़ाएं।
1: बहुत अच्छा है जी, माशाल्लाह गुफ्तगु हो रही है जनाब राशिद इकबाल साहब से, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगु है क्योंकि नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपने एरिया में जो काम किया उसमें डेवलपमेंट हुई है माशाल्लाह, लोगों में इंप्रूवमेंट आई है, और जैसा कि उन्होंने बताया कि इनके इलाके से कोई ना कोई बच्चा बोर्ड में पोजीशन तकरीबन हर साल ले रहा है, तो ये बड़ी अच्छी एक तब्दीली है जो ये लेके आ रहे हैं माशाल्लाह अपने इलाके में। तो राशिद साहब से मजीद गुफ्तगु करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक, सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: 93.6 बोरियत को भगा दो।
1: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: मोबाइल डिवाइस की पीटीए से तस्दीक के मुतालिक जानने के लिए खरीदते वक्त सबसे पहले इसका 15 हिस्सों का IMEI नंबर *#06# डायल करके मालूम करें और फिर IMEI नंबर 8484 पर SMS करें या वेबसाइट से चेक कर लें कि ये डिवाइस पीटीए से तस्दीक शुदा है। पीटीए।
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया FM 92.6।

0: किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।
1: Broadcasting University Studios, where knowledge is empowerment. This is Lunch 2.6.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, आई एम डॉक्टर करार हैदर, एक नया प्रोग्राम लेके और एफओएसटी के सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम लेके, नन अदर देन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ रहमान अलवी, डॉक्टर ताहिरा शुजा और डॉक्टर मुदस्सर अली शाह। हम इनसे जानेंगे फिजिक्स डिपार्टमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं चलूँगा डॉक्टर आतिफ रहमान अलवी की तरफ, अपना तारुफ करवाइए डॉक्टर आतिफ रहमान अलवी मुख्तसरन।
3: जी अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर आतिफ रहमान अलवी, आई एंड माय पीएचडी डिग्री फ्रॉम सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब।
2: जी डॉक्टर ताहिरा साहब, मुख्तसरन तारुफ करवाइएगा अपना।
4: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिरा शुजा एंड आई एम वर्किंग हियर एट डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर सिंस 2021। आई कम्प्लीटेड माय PhD from Government College University Lahore and I have research experience and got the opportunity to work at the institute like National Center for Physics Islamabad and University College London.
2: Thank you Dr. Tahira sahiba. Dr. Muzaffar Ali Shah, aap batayega ki aap mukhtasaran taaruf apna karwaiye.
5: I'm Dr. Muzaffar Ali Shah. I did my PhD from GC University Lahore. And I have an experience in plasma waves and instabilities. So that's my research area. And I have 20 publications in international reputed journals. And I'm still working here. I'm working here in UCB since 2023 as associate professor.
2: Thank you very much. Dr. Atif Rahman Alvi Sahab, because you physics department mein UCP mein aapka stay sabse purana hai, isliye batayega thoda sa mukhtasaran UCP ke physics department ke bare mein.
3: डॉक्टर साहब थैंक यू। डॉक्टर साहब इस तरह से है कि यूसीपी डिपार्टमेंट से पहले हम लोग यूसीपी ज्वाइन करने से पहले हम लोगों ने जब ये फिजिक्स डिपार्टमेंट स्टार्ट किया वो 2016 थे, नो डाउट कि मेरी ज्वाइनिंग जो है वो इन पीजीसी में 2008 की है। देन आफ्टर डैट 2016 में जब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किए यहाँ यूसीपी में, तो पहला बैच था, तो पहले बैच को अभी क्योंकि वो एक्चुअल जो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड थी वो नहीं थी, देन इसे फॉर द टाइम बीइंग शिफ्ट कर दिया गया फिरोजपुर रोड कैंपस 2C में। वहाँ से हम लोग वर्किंग करते रहे और इसके जो प्रोग्राम फिजिक्स के थे, मैथ्स के और बाकी हमने कंटिन्यू किए। देन 2019 अगेन वो शिफ्ट हो यूसीपी बिल्डिंग, जब ये यहाँ पर शिफ्ट हुए हम लोग, तो यहाँ प्रॉपर फिजिक्स का डिपार्टमेंट कंटिन्यू हुआ। जी फिजिक्स डिपार्टमेंट पे 2019 में यहाँ जब कंटिन्यू हुआ तो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ हमने इस पर वर्किंग शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती गई और हमारे पास उसके बाद 52 स्टूडेंट्स भी बैच में आए एंड देन सो ऑन वर्किंग थी, मिलजुल के टीम वर्क के साथ था।
2: डॉक्टर अलवी साहब शुक्रिया आपने तारुफ करवाया। डॉक्टर ताहिरा साहब आप जब आई फिजिक्स डिपार्टमेंट में तो आपने फिजिक्स डिपार्टमेंट को कैसा पाया?
4: फिजिक्स डिपार्टमेंट में चूँकि ये मेरी यूनिवर्सिटी लेवल पे फर्स्ट जॉब थी और मेरे लिए सीखने को बहुत कुछ था, और ये हमारी खुशकिस्मती कि डॉक्टर करार हैदर जैसे एचओडी हमें मिले जो कि हमें फ्री हैंड देते हैं काम करने के लिए, गाइड करने के साथ साथ फिर वो हमारी जो अपनी इनिशिएटिव्स हैं उनको सप्रेस नहीं करना और उसको इनक्रेज करना है। उसमें रिस्क भी होते हैं लेकिन ही नेवर नेवर एवर यू नो ही इज़ नेवर एवर अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क एंड इनक्रेजिंग अस। तो उसकी वजह से हमने बहुत सीखा और मेरे ख्याल में कि जो मेरा स्किल सेट जो है 3-4 साल में यहाँ पे काम करते हुए डेवलप हो गया है, वो मैं कहीं और शायद 10 साल में भी ना कर सकूँ। उसके बाद फिर चूंकि ये रिलेटिवली एक न्यू डिपार्टमेंट था और इसमें फिर हमने बहुत सारी इसको एक लेवल पे पहुँचाने के लिए जो कि आजकल के मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कम्पीट कर सके, उसके लिए उस लेवल तक पहुँचाने के लिए हमने मेहनत भी बहुत की इकरार साहब की गाइडेंस के अकॉर्डिंगली, और फिर उसमें सीखा भी हमने बहुत ज़्यादा और मज़ा भी आया और अभी तक हम इंजॉय कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम ऐसे ग्रो करते रहेंगे।
2: जी बहुत शुक्रिया, ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि कितनी मेरी हेडशिप में आप कंफर्टेबल हैं। बहरहाल कोशिश तो है मेरी। अभी डॉक्टर मुज़स्सिर अली शाह, सिंस यू ज्वाइन इन 2023 एंड आई वाज लकी टू बी वन ऑफ द पैनलिस्ट्स व्हेन यू वर बीइंग इंटरव्यूड, राइट? सो आप जब आए और बताता चलूं मेरे मौजे सुनने वालों, डॉक्टर मुद्दसर नजर मुद्दसर नजर क्रिकेटर जेन में आ गए, माशाल्लाह सलामत रहें, ऐसे ही होता है कि ये आए थे नर्स से, तो नर्स आपको पता ही है कि सुरैया से ज़मीन पे आ जाना बकौल इकबाल के शेर के, मैं इनसे पूछूंगा आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा नर्स छोड़ के और फिजिक्स डिपार्टमेंट UCP में आना।
5: थैंक यू सर। अगेन डॉक्टर ताहिरा की बात को लेके आगे चलूंगा कि इट्स एन ऑनर टू सर्व अंडर द काइंड लीडरशिप ऑफ डॉक्टर करार। तो यहाँ पर मुझे जो चीज़ फील हुई नर्स से ज़्यादा जो बेहतर मुझे चीज़ फील हुई कि यहाँ पर थोड़ा सा ओपननेस थी और ये कि डॉक्टर करार की तरफ से गैर ज़रूरी प्रेशर नहीं था किसी चीज़ के लिए, और हम इंडिविजुअली भी हम लोग काम करते रहे, अपने इनिशिएटिव्स लेते रहे और अभी तक हम ले रहे हैं ऐसे इनिशिएटिव्स और उसमें हमेशा जो है वो करार साहब की सपोर्ट रही है। तो ये चीज़ एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे इनक्रेजिंग लगी। यहाँ पर फैकल्टी का जो रवैया था वो भी बहुत इनक्रेजिंग था, यहाँ पर लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। डेफिनेटली मैं अपनी फैमिली को बैक इस्लामाबाद छोड़ के आया हुआ था तो यहाँ पर लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट यहाँ पर मिला जिसमें काम करने का मौका मिला लोगों के साथ। यहाँ पर हमने फिर फिजिक्स के प्रोग्राम को रीस्ट्रक्चर भी किया, एमफिल के प्रोग्राम को रीस्ट्रक्चर किया, नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए। तो ये सिर्फ जो है वो डॉक्टर करार की सपोर्ट की, जैसे कि जो भी हमने इनिशिएटिव लिए उनको इन्होंने सपोर्ट किया।
2: बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से बताया। और मौजे सामईन, अब हम बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This
2: is 92.6.
3: वेलकम बैक. हम बढ़ते हैं दोबारा अपने प्रोग्राम की तरफ. आप जानते हैं कि आज हमारे साथ फिजिक्स डिपार्टमेंट मौजूद है. 7 डिपार्टमेंट्स हैं FOST के मातहत और 7वां डिपार्टमेंट फिजिक्स है. आज आखिरी प्रोग्राम है. डॉक्टर ताहिरा साहिबा, आपसे शुरू करूंगा. आप मुझे ये बताइएगा कि प्योर साइंसेज जो हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, ये क्यों अपनी कदर खो रहे हैं?
4: सर, ये मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि वन कैन नेवर डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक साइंसेस. उसके बगैर मुमकिन नहीं है. लेकिन अगर हम देखें, एज वी ऑल नो कि वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी, अब बेसिक साइंसेस जो हैं वो हो चुकी हुई हैं, उनके बारे में रूल्स, प्रिंसिपल्स वो डेवलप हो चुके हुए हैं, लॉज डेवलप हो चुके हुए हैं. उनको अप्लाई करके अप्लाइड साइंसेस जो हैं वो अब ज़्यादा ग्रो कर रही हैं.
3: डॉक्टर अलवी साहब, यही सवाल लेकर आपकी तरफ आऊँगा कि क्या वजह है कि बेसिक साइंसेस जो कि एक शजर की मानिंद होती हैं, उससे हट के लोग फल खाने पे लगे हुए टेक्नोलॉजी की तरफ, आखिर क्या वजह है?
5: सर, वजह यह है कि देखें, बेसिक साइंस को किसी तौर पे हम इग्नोर नहीं कर सकते. बेसिक्स, जैसे कहते हैं कि रूट्स हैं तो ट्री ग्रो करता है. सो रूट्स आर द फंडामेंटल्स. डेट्स वाई कि बेसिक साइंसेज आर द फंडामेंटल्स. इनके बेस पर ही अब ये न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज अब ग्रो कर रही हैं. तो हमें ज़रूरी है कि हम पहले इनको, हाँ, इसमें कुछ न्यू एडवांसमेंट लेकर आएँ. इन बेसिक साइंसेज में हम अपने रोड मैप को रीशेड्यूल करें, रिव्यू करें और उसमें कुछ चेंजिंग लाएँ, अप टू डेट करें, स्टेट ऑफ द आर्ट करें, तो इंशाल्लाह ये हमारा बेसिक साइंसेज पीछे नहीं रहेंगे फिर इसमें.
3: जी बिल्कुल ठीक, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया. डॉक्टर मुजस्सर अली शाह साहब, आपसे भी यही सवाल पूछूंगा, क्या वजह है कि बेसिक साइंसेज अपनी कदर क्यों खोती जा रही हैं?
6: जी सर, जिस तरीके से डॉक्टर ताहिरा और डॉक्टर अलवी ने बात की, बिल्कुल सही है कि बेसिक साइंसेज जो हैं, इन तमाम चीज़ों का जो है स्टार्टअप है. यहीं से हम इस चीज़ को डेवलप करते हैं. जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उन पे लोगों का फोकस आजकल ज़्यादा है. लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा अगर इसको बताना चाहूँ, कि जैसे आज से कुछ साल पहले एक इंजीनियर वकार अजीम साहब आए थे टीवी पर, उन्होंने पानी से गाड़ी चलाने की एक
3: नाकाम
6: कोशिश की थी और उसमें बहुत ज़्यादा लोग कन्विंस भी हो गए थे कि मतलब ऐसा पॉसिबल है. लेकिन एज अ बेसिक साइंस एक्सपर्ट, हमारे जो सीनियर्स थे, उन्होंने फौरी तौर पर बताया कि इट्स नॉट पॉसिबल बाय जस्ट यूजिंग अ सिंपल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी. तो इसका मतलब है, जब तक आपके पास बेसिक साइंस का नॉलेज नहीं होगा, आप जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज में भी जो है वो एक्सेल नहीं कर सकते. सो वी नीड के ये इनको हमें छोड़ना नहीं है. लेकिन जैसे आतिफ साहब ने कहा कि इन्हीं में हम ऐसी एडवांसमेंट लेके आएँ जो कि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, ज़्यादा अप्लाइड नेचर की हो, और उसके ज़रिए जो है वो हम बेसिक साइंसेज को दोबारा अपने मुकाम पर लेके आ सकते हैं.
3: बिल्कुल ठीक. डॉक्टर अलवी साहब, आप बताइएगा कि जैसे हमने कोशिश की फिज़िक्स को दोबारा से अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए और दिलवाने के लिए, तो हमने BS फिज़िक्स प्रोग्राम को हमने रिस्ट्रक्चर किया. थोड़ा सा बताइएगा मुख्तसरन, क्योंकि बाकी भी पैनलिस्ट से ये सवाल मैं करूँगा.
5: जी सर, बिल्कुल सर, हमने रीस्ट्रक्चर किया. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने पहले तो इसमें स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई. फॉर स्पेशलाइजेशन हमने कहा कि BS फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करवाई थी, मेडिकल फिजिक्स में थी.

0: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया
1: जी लियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर अलवी, मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों की ज़हनी तालीमी इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए फिजिक्स डिपार्टमेंट में आप क्या ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा हो पाए?
2: जी डॉक्टर साहब, इसमें क्योंकि हमारे पास करिकुलम के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का होना भी ज़रूरी है, तो डेट्स वाई स्टूडेंट्स को स्टडी के साथ साथ इंगेज करने के लिए हम जैसे फेस्ट है हमारा जो पिछले 2 साल से चल रहा है और हो रहा है, इनकाद हो रहा है उसका, तो उसमें हमने बाकायदा इंटरटेनमेंट के लिए ह्यूमन लूडो टाइप ऐसी एक्टिविटीज़ भी रखी हुई हैं। इसके अलावा फिर उनमें कम्पटिशन डेवलप करने के लिए जो है पोस्टर कम्पटिशन्स का है, देन ब्रेन फेस्ट का है, गेम्स का है, इस तरह प्रोजेक्ट्स का है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने उसका कंपटीशन है, देन इस किस्म की एक्टिविटीज़ में उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए कि एक हमने फिजिक्स डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, डॉक्टर करार साहब ने उसको बाकायदा आगे प्रोसीड किया, जिसमें था कि जी नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक विजिट करवाया गया यहाँ पर उनके जो मेम्बर, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी का यहाँ पे एक सेमिनार करवाया गया, और उस सेमिनार में फिर बाकायदा बच्चों के लिए जो एक सीखने का बहुत सा लम्हा था, बहुत से अच्छा इंटरटेनमेंट मौजूद थी। इस किस्म की एक्टिविटीज़ का हम कोशिश करते हैं कि इनेकाद करें।
1: जी डॉक्टर तारा साहब, आप इसमें मज़ीद इजाफा करेंगी?
3: जी, चूँकि मेरा फील्ड नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी है, तो और ये ऐसा फील्ड है कि जिसमें रिसर्च और हैंड ऑन प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है, तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंटल लेवल पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस से डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशंस की हैं, जैसे सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ इन फिज़िक्स गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, फिर इसमें इनमोल में हम स्टूडेंट्स को नैनो मेडिसिन पे और मेडिकल फिज़िक्स पे रिसर्च करा रहे हैं, फिर हमने नेशनल सेंटर फॉर फिज़िक्स इस्लामाबाद जो है वहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के लिए विजिट्स अरेंज किए हैं, और आगे हमारे प्लान हैं कि हम रिसर्च कोलैबोरेशंस भी स्टूडेंट्स की को वहाँ पे भेजने और रिसर्च करने के मौके फराहम करेंगे। उसके अलावा फिर एनवायरमेंटल फिजिक्स में रिसर्च के हवाले से अगर देखा जाए तो उसके साथ हमने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनके साथ हमने कोलैबोरेशन की और हमारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पर जाके काम किया बिल्कुल अप टू डेट टॉपिक्स के ऊपर और अच्छी रिसर्च की जो कि पब्लिशेबल मटेरियल था। और इस तरह से हम ना सिर्फ इनके साथ अपने रिसर्च स्टूडेंट्स के साथ इन इंस्टीट्यूट्स और लैब्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बल्कि हम बाकी भी अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप्स वगैरह जो हैं वो भी अरेंज कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे और इन इंस्टीट्यूट्स में भी, जिनका मैंने जिक्र किया है कि वो 6 मंथ्स की शॉर्ट जो इंटर्नशिप्स हैं वो करें, उनको सर्टिफिकेशन मिले जो आगे करियर में भी उनको हेल्प करे, इसी तरह से उनको फिजिक्स के लॉज जो वो थ्योरी में पढ़ रहे हैं वही उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का भी मौका मिले।
1: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुजस्सर साहब। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फेस्ट के दौरान और वैसे भी पीछे भी हमने एक दो पंजाब कॉलेज से भी हमने एक बुलाए थे, उसके बारे में बताइए वो एक्टिविटीज़ क्या थी।
4: जी, हमने PGC से जो है वो एक हसन फरीद साहब हैं जिनका बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है, वो एक बड़ी डायनेमिकल किस्म की वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो फिज़िक्स के बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत इजीली वे जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने उनको बुलाया, एक बहुत अच्छी गैदरिंग थी हमारे स्टूडेंट्स की,
1: स्टूडेंट ने उसको बहुत एंजॉय भी लोग आए थे।
4: जी बाकी डिपार्टमेंट से भी लोग आए और उसको उन्होंने बहुत एंजॉय किया और बहुत अप्रिशिएट किया। वो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी थी जिसमें हमने देखा कि स्टूडेंट्स जो है उन्होंने साइंस में इंटरेस्ट लिया, फिज़िक्स के रूल्स एंड लॉज में इंटरेस्ट लिया और उसको बहुत अच्छे तरीके से परसीव भी किया कि ये चीज़ें कैसे, इवन ये कि बहुत सारे ऐसे फैकल्टी मेम्बर्स के साथ कुछ बच्चे भी आए हुए थे जिन्होंने में पार्टिसिपेट किया और वो उन्होंने इसको एंजॉय किया। फिर उसके साथ साथ हमने जो है वो एस्ट्रोनॉमी नाइट का भी एक अरेंज किया हुआ था जिसमें हमने एक टेलीस्कोप जो है वो अपने एक हमारे एक कोलीग हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने जो है वो यहाँ पर अरेंज की, वो हमने UCP की बिल्डिंग के टॉप के ऊपर हमने इंस्टॉल करके वहाँ से जो है वो सितारों का सियारों का नज़ारा किया, वो भी हमारी एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गई। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो फिजिक्स डिपार्टमेंट अरेंज करता रहता है जिसमें हम स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रखते हैं ताकि खेल खेल में जो है वो स्टूडेंट जो है वो
1: अपनी मुझे बताइएगा जो आपका है खासा है माइंड गेम या ब्रेन गेम्स वो
4: जी जी ये मतलब मैंने यहाँ पर 2 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम पे यहाँ पर एक फेस्ट का जो चल रहा था उसमें हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की थी कुछ ब्रेन गेम्स जो ऐसी गेम्स जो कि मतलब बोर्ड गेम्स कहलाती हैं और अब पाकिस्तान में बहुत रेयरली जो है वो खेली जाती हैं तो उससे हमने स्टूडेंट्स को ज़रा स्टिमुलेट करने के लिए उनके माइंड को और
1: थॉट प्रोसेस को ट्रिगर करने
4: जी जी बिल्कुल तो उसमें हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमारे पास जो PGC के जो स्टूडेंट्स आए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के उन्होंने जो पहले साल था उसमें उनका इंटरेस्ट था फिर उसके बाद जब दूसरे साल वो आए दे ऑलरेडी न्यू अबाउट दिस गेम्स तो फिर उनका इंटरेस्ट उससे डबल हो चुका था कि जो पहली दफ़ा अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास किसी एक गेम के लिए 10 से 12 रजिस्ट्रेशन आई थी तो अगली दफ़ा वो 50-60 हो चुकी थी तो हमें फिर उसमें जो है वो फिर हमें एक कट लगाना पड़ा कि हमारे पास इतने अवेलेबल हैं तो हम इतने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं तो ये एक मतलब एक बेहतर उसकी तरफ गया तो इंशाल्लाह इन द फ्यूचर हम इस चीज़ को
1: कंटिन्यू
4: फन फैक्टर भी था और स्टूडेंट्स ने बहुत इसको एंजॉय किया
1: माशाल्लाह। डॉक्टर तारे साहब आपसे पूछूंगा कि जो हमने जो नया प्रोग्राम BS इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस करवाया है उसके लिए आप ही किसी सजेशन पे आपने मुझे बताया था कि हम एक उस पे एक प्रीकर्सर के तौर पे एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे और एक छोटा सा कोर्स भी करेंगे इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो 2 से 3 हफ्तों पे मुश्तमिल होगा वो इनिशिएटिव क्या था हमारे सामने को बताइएगा।
3: यस सर ये हमने एक 3 वीक्स शॉर्ट कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका टाइटल है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स इन एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग सिस्टम्स तो ये बेसिकली 3 मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल है। इसमें फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो दैट कवर्स द इंट्रोडक्शन टू बेसिक नैनो टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग सिस्टम्स। सो इसके लिए जो स्टूडेंट्स को इसमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और फिर जो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए भी एक इंट्रोडक्टरी कोर्स ये फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो उनके लिए इंट्रोडक्टरी कोर्स के तौर पर बेनिफिशियल हो सकता है। सेकंड मॉड्यूल्स में ये सेकंड मॉड्यूल गिव्स द डीपर नॉलेज टू द नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर द टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशंस इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स एंड वाइल द थर्ड मॉड्यूल विच विल बी कवर्ड इन द थर्ड वीक ऑफ द शॉर्ट कोर्स इसमें हम कवर करेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ दिस नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन एनर्जी इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स। सो ये एक तो 3 वीक्स का जो फुल करना चाहें शुरू से इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल से लेकर एप्लीकेशन तक और इसमें हमने ये भी फैसिलिटेट किया है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है किसी एक मॉड्यूल में या 2 में या 3 में तो वो इंडिविजुअली सिंगल मॉड्यूल में या 3ों में उसके लिए वो रजिस्टर्ड हो सकता है।
1: और इनके फ्यूचर इनके बेनिफिट्स क्या हैं थोड़ा सा बताइएगा मुख्तसर क्या फ़ायदा होगा बच्चों को।
3: बेसिकली ये स्टूडेंट इनको चूंकि ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है एक तो ये इनके लिए प्री रेक्विजिट हो जाएगा अगर BS प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग सिस्टम वो ऑप्ट करते हैं तो उसके अलावा इंडस्ट्रीज लेवल पे अगर देखा जाए जो कंसल्टेंट्स हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में और फिर सोलर सेल्स की इंडस्ट्रीज है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की इंडस्ट्रीज में तो उनको नॉलेज होगा उन डिवाइसेस के बारे में और वो उसको बेटर कर सकते हैं। फिर जो अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं तो आजकल यही जो रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उनकी नई इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं तो उसमें अगर कोई एंटर होना चाहता है तो उनको एक बेसिक नॉलेज ये कोर्स प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्च के लिए एज सच बेसिक साइंसिस के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें ये अप्लाइड कोर्सेज उस तरह से नहीं पढ़ाए जाते तो जब आप रिसर्च के लिए आते हैं तो ऑब्वियसली आपको अप्लाइड लेवल की रिसर्च करनी पड़ती है तो ये उनको रिसर्च की एक बुनियाद फराहम करता है।
1: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सिर साहब आपने फिजिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके और हेड ऑफिस के साथ मिलके एक और फिर आपने एक जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे भी 2 आपके हैं आप जो काम कर रहे हैं उनको मुख्तसर बताइएगा 2 मिनट में।
4: जी इनिशियली हमने एक आरवो कंपनी है जो कि पीजीसी के साथ काम करती है. दे आर डिजाइनिंग वीडियो लेक्चर्स फॉर मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स. उसमें जो टॉपिक्स हैं डिफरेंट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के या नाइन टेंथ के, उसको एक बड़ा इंटरेक्टिव काइंड ऑफ सिस्टम है जिसको यूज किया जाता है. वो ग्लास बोर्ड है जिसके पर आप जो है वो वीडियो लेक्चर्स देते हैं, और उसकी खसूसियत यह है कि उस के साथ साथ आप उसमें एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं. मींस आप एक तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं और आपके साथ जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि रोटेट कर रहा है, और आप उसी को रोटेट करते हुए उसमें दिखा रहे हैं उसकी डिफरेंट डायमेंशन, मतलब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को जो है वो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर. तो वो एक बड़ा खूबसूरत ब्लेंड है जिसमें आप खुद से भी राइट डाउन कर रहे हैं, इसमें वॉइस भी दे रहे हैं, उसके अलावा आप खुद भी पर्सनली अवेलेबल हैं, और उसके अलावा वह एनिमेशंस और वीडियोस भी उसके साथ चल रही हैं. तो उसके साथ हमने एक शॉर्ट सा एक वीडियो लेक्चर बनाया जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर था, जिसमें आप इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी ऑफ लाइट को. तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमने उसमें, और अब हम उसको आगे लेके चल रहे हैं कि हम उसको आगे जाएं और हम पूरा जो कोर्स है अप्लाइड फिजिक्स का, जो कि बेसिकली इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पूरे कोर्स को जो है वो डिज़ाइन करें और उसके लेक्चर्स जो है उस पर डेवलप करें.
1: और एक और इंटरनेशनल आपका जो इनिशिएटिव है.
4: जी इसी तरीके से हम इंडोनेशियन एक यूनिवर्सिटी है उसके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं कि कुछ उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो लेक्चर्स देंगे
1: online.
4: अभी ऑनलाइन, अभी ये इनिशियली है, तो हम 2-3 लेक्चर्स की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं इसकी सक्सेस के ऊपर कैसा होता है. इसी तरीके से यहाँ से मुझे नॉमिनेट किया गया है तो मैं वहाँ पर उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर दूंगा 2-3, तो फिर देखेंगे अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इन द लॉन्ग टर्म हम इसको आगे भी लेके चलेंगे, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, मजीद लेक्चर्स और मजीद कोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे.
1: दैट विल बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द टू यूनिवर्सिटीज एंड बिटवीन द टू स्टेट्स,
4: यस,
1: पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया.
4: जी जी बिल्कुल.
1: व्हिच इज अ बदली इस्लामिक कंट्री.
4: जी जी बिल्कुल.
1: राइट. डॉक्टर अलवी साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ अरसे बाद मार्केट में जाएंगे फॉर सीकिंग डिफरेंट जॉब्स, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल सर, क्योंकि ये स्टूडेंट्स ही कह रहे हैं कि हमारी जो है एक किस्म का पब्लिसिटी भी है, तो मैं उन्हें बस यही एक इकबाल के एक शेर में कहूँगा, उन्हें मैसेज दूंगा कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा.
1: सुभान अल्लाह, बहुत आला, बहुत अच्छा. डॉक्टर तारा साहब, इसी तरह मुख्तसरन.
3: जी सर, मैं ये स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि अब आपके पास नॉलेज है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क, डोंट बी अफ्रेड ऑफ ड्रीमिंग बिग, एंड स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट फॉर यू.
1: डॉक्टर मुदस्सिर साहब.
4: जी सर, हमारे फिजिक्स के स्टूडेंट्स का जो है, मतलब फिजिक्स ऐसी फील्ड है जो कि हर जगह पर इम्प्लीमेंटेड है. हमने यहाँ तक देखा है कि हमारे जो बीएस के स्टूडेंट, जैसे मेरा नस का एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने बीएस किया फिजिक्स में और उसके बाद वो मैकाट्रॉनिक्स में जो है उन्होंने एमफिल किया, इसी तरीके से वो आगे और मेटलर्जी की तरफ चले गए. इस तरीके से बीएस फिजिक्स जो है वो हर फील्ड में इम्प्लीमेंटेड
1: बेसिक प्लेटफॉर्म.
4: जी, बेसिक प्लेटफॉर्म है. तो हमारे स्टूडेंट्स को बल्कि घबराने चाहिए, दे हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. बाहर के आप फॉरेन स्कॉलरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप एमएस के डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो इसके थ्रू जो है सिर्फ फिजिक्स नहीं, क्योंकि अब फिजिक्स के अलावा फिजिक्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अप्लाइड नेचर है, उसकी वजह से आप एप्लीकेबिलिटी की वजह से आप हर जगह पर जो है जहां कहीं पर भी इसका ब्लेंड मौजूद है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी अपनी एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हैं.
1: बहुत शुक्रिया. चूंकि बींग एचओडी फिजिक्स, मेरा भी बनता है कि मैं भी अपने पास आउट होने वाले टू बी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए एक पैगाम दूं. तो जैसे अलवी साहब ने मुझे एक मशल राह फराहम कर दी कि जी, इकबाल का एक शेर है कि आसमानों पर नजर रख अंजुमो महताब देख, सुबह की तामीर करनी है तो पहले ख्वाब देख. सो अपने ख्वाबों को देखिए रात को, क्योंकि इकबाल के बकौल ख्वाबों की दुनिया भी एक बिल्कुल दुनिया होती है जो एग्जिस्ट करती है. अब दोबारा से वापस जीती जागती दुनिया में आ जाते हैं. ख्वाब देखिए, उन्हीं ख्वाबों की तामीर के लिए दिन रात مشقت کیجئے، محنت کیجئے، جانفشانی سے، ایمانداری سے، صدق دل سے، اور کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ اسی کے ساتھ میں اپنے تینوں مہمانوں کا، ڈاکٹر مظفر علی شاہ کا، ڈاکٹر طاہرہ شجاع کا اور ڈاکٹر عاطف رحمان علوی کا، مشکور ہوں کہ آپ آئے اور ہمارے آج کے پروگرام میں آپ نے چار چاند لگائے۔ آخر میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں، پاکستان

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: चलाओ मित्रा।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

लाहौर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.